लिस्के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा

0: श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। अपना सर्वस्व आराध्य के प्रति समर्पित कर उनमें लीन हो जाना ही सच्ची आराधना है। जहां भक्त और आराध्य के बीच कुछ भी अलग नहीं होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: राम नाम में वो शक्ति है जिसके सुनने मात्र से ही जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

बस यही करना है कि हम केवल भगवान पर निर्भर करना सीख ले, अपना सब कुछ उन्हें सौंप कर उनके हाथ की कठपुतली बन जाएं। वे जब जो जैसे करें उसी में हमें आनंद का अनुभव हो। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है अमरवाणी।

0: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
1: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्।
0: हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं।
1: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः।

0: नमस्ते। हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा, तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
1: भव जलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित्रिकलत्रत्राणभारावृतानां।

0: भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित्रिकलत्रत्राणभारावृतानां विषमविषयतो ये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणां।
1: भवसागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।
0: भव जलधिम मगाधम दुस्तरम निस्तरेयम् कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वम् सरसि जदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् भव जलधिमगाधम् दुस्तरम् निस्तरेयम् कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वम् सरसि जदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्।
1: हे चित्त, तू ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
2: अभी आप सुन रहे थे अमरवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। दिन में 12 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंच। इसमें भारत के ऐतिहासिक विरासत के बारे में बातचीत की जाएगी। नया शब्द नया ज्ञान, साथ ही बच्चों की प्रस्तुति होगी कहानी कविता और साथ ही सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी मेनका श्रीवास्तव। दिन में 12 बजे 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी जगत। आज का थीम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसमें महिलाओं में कम हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी और साथ ही बताया जाएगा क्या महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं। युवाणी का समय है 5:05 पर। ग्राम जगत सुनिएगा 5:35 पर। इसमें चर्चा होगी विश्व रक्तदाता दिवस पे और ये कार्यक्रम लेकर आएंगे उमेश कुमार पटेल और ओम प्रकाश त्रिपाठी। भेंटवार्ता सुनिएगा पानी एवं मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर विमल मोदी से विनय कुमार। 6:10 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, इस पर चर्चा की जाएगी। वार्ता सुनिएगा डॉक्टर सतीश कुमार तोमर की। विषय है परिस्थिति के अनुसार धान की प्रजातियां। रात्रि 8 बजे कहानी वृद्धा का वृद्धाश्रम। कहानीकार हैं जयशंकर मिश्र। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं सुबह 7:30 पर। हिट्स सुपर हिट्स का समय है सुबह 8:45। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुबह 10:05 पर। गीतांजलि का समय है 11:30 और गाने सुहाने दिन में 12:30 पर। साथ ही रात्रि में 7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज आपको अजब गजब लव फिल्म से के गीत सुनवाए जाएंगे। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:50 पर। आज के फनकार हैं महेंद्र कपूर। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव-गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहाँ ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: फ्रांसदेशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भारतीयप्रवासिजनैः भव्यं स्वागतं कृतं। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीयशास्त्रीयनृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांसदेशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्तरूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोरजलवायुपरिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडकपुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी

0: लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान महादान है, रक्तदाता बनकर जीवन को बचाइए। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से अब से थोड़ी देर में।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
4: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
3: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
4: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
3: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन्य पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
5: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
3: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
6: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
3: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

अभी आपने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और शब्द रचना अनजान की थी। कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं आधी फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और गीतकार गुलजार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

आप सुन रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। धुन बनाई है राहुल देववर्मन ने और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

ये आवाज़ है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आशा। संगीत से सजाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। संगीतकार हैं राजेश रोशन, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की हैं। कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

0: इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है समाचारों का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: सब्जियों के 2000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में

0: भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस

0: अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने की सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
3: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में

0: पश्चिम मॉनसून की कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कायम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तावुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो स्लोवाक कयादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें, जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं, पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दोतरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइज कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा, जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 बरसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
3: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फायदा पहुंच सके। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6 करोड़ 90 लाख से बढ़कर माली साल 2025 में 9 करोड़ 20 लाख हो गई है। अगले सिलसिले के GST निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमत सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमा डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब تہران میں امام خمینی عبادت گاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادھو نے آج خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جادھو نے کہا کہ عطیہ کیے جانے والے خون کے ہر قطرے میں کسی ضرورت مند کو صحت یاب کرنے اور ایک خاندان کی خوشیوں کو واپس لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں، ذمہ دارانہ طور پر خون عطیہ کریں اور قیمتی جانوں کو بچانے میں اپنا رول ادا کریں۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ جیت کے لیے 195 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 22 اوورز 5 گیندوں میں جیت حاصل کر لی۔ کپتان شبمن گل نے 66 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 84 رن بنائے۔ شبمن گل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا میچ لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں 17 جون کو کھیلا جائے گا۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایج پیسٹن کے مقام پر گروپ اے کے مقابلے میں بھارت روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، G7 ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو ملے گی نئی قوت، تجارت، ٹیکنالوجی، اختراع اور عالمی امور سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو اگلا آرمی چیف مقرر کیے جانے کی خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، مستقبل کے دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل ضروری۔ G7 اجلاس کے موقع پر امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کا امکان، معاہدہ ہونے کی صورت میں دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں میں جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشا اور چھتیس گڑھ کے جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ اور دھرمشالہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
4: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ گورکھپور کیندر ہے۔ آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم ہٹس سپر ہٹس۔

कार्यक्रम का पहला गीत लिया गया है कर्ज फिल्म से। इस गीत में धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी। आवाज किशोर कुमार और साथियों की है। कार्यक्रम का पहला गीत

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: कार्यक्रम का अगला गाना है कुदरत फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया।
0: शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है।

इस गीत के साथ ही हिट्स सुपर हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से होगा।

0: का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
2: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
3: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेसफुल मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में।

0: सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
1: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं।
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है, और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
0: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है, जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए, और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के, भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता

0: जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्ज वाले हों, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्ज ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के, इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उसे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं। और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है, तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही है।
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
0: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी, इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इसराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
0: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है, और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के, बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ता,
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान इस अंतराल के बाद।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर चर्चा मोहम्मद उमेर से। इसके अलावा सुनेंगे चर्चा गर्मी में रखें हिफाजत मौजू पर, और आज के कलामे शायर में सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारुख आदिल से उनका ताजा कलाम।
2: उर्दू प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका मेजबान मोहम्मद उमेर। आदाब कबूल फरमाएं सामाइन। आज 14 जून है और आज खून के अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सामाइन, खून का अतिया इंसानियत की खिदमत का अजीम जरिया है। ये ऐसा नेक अमल है जिससे किसी ज़रूरतमंद इंसान की जान बचाई जा सकती है। हादसों में ज़ख्मी होने वाले मरीज, ऑपरेशन से गुजर रहे लोग, थैलीसीमिया के मरीज और कई दीगर बीमारियों से जूझ रहे अफराद को अक्सर खून की ज़रूरत पड़ती है। खून के अतिया से न सिर्फ किसी की ज़िंदगी बचती है बल्कि समाज में हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानी भाईचारे का पैगाम भी फैलता है। सेहतमंद अफराद के लिए खून का अतिया महफूज माना जाता है और इससे जिस्म में नया खून बनने का अमल भी जारी रहता है। याद रखिए, खून का कोई कारखाना नहीं होता है और न ही इसे मसनूवी तौर पर तैयार किया जा सकता है। इसलिए हर सेहतमंद शख्स का फ़र्ज है कि वो वक्त ज़रूरत खून का अतिया करके किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा करे। लेकिन इतनी अहमियत के हामिल होने के बावजूद आज भी लोग इस अहम मसले पर बेदार नहीं हैं। सामईन, आज 14 जून को दुनिया भर में खून का अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है जो अपनी खुशी से खून का अतिया देकर दूसरों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। खून का एक यूनिट किसी हादसे के शिकार, ऑपरेशन के मरीज या किसी

0: संगीन बीमारी से जूझ रहे इंसान के लिए नई जिंदगी का सबब बन सकता है। खून का कोई मस्तूई बदल मौजूद नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत सिर्फ इंसानों के जरिए ही पूरी की जा सकती है। आइए हम सब इस दिन ये अहद करें कि अगर हमारी सेहत इजाज़त दे तो हम भी खून के अतिये के इस नेक काम में हिस्सा लें और इंसानियत की खिदमत का जरिया बनें। याद रखिए, आपका दिया हुआ थोड़ा सा खून किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। सामईन, इस अहम गुफ्तगू के बाद माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायर जनाब मोहम्मद कलीम फतेहपुरी।
1: गज़ल का मतलब समाज फरमाएं।

मैं चढ़ कर मसलहत के पर्वतों पर, मैं चढ़ कर मसलहत के पर्वतों पर, बखीलों को भी दानी लिख रहा हूँ।

0: मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूं। बहुत शुक्रिया।
1: सामाई नभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे। शायर जनाब फारूक आदिल साहब के खूबसूरत कलाम से आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त, आदाब।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं महेंद्र कपूर।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ

0: युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम लेकर आई हैं चंदन लता दीक्षित और प्रस्तुत करता है नूर मोहम्मद।
2: 0551220538 6 हेलो
3: हेलो
4: हेलो
5: हेलो
2: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश।
7: नमस्कार दोस्तों, आज आपके पसंद के गीतों को हेलो फरमाइश कार्यक्रम में लेकर आपके साथ हूं मैं चंदनलता। श्रोताओं, आज विश्व रक्तदान दिवस है। कहते हैं रक्तदान महादान, और इसी प्रण के साथ आइए लेते हैं आज की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
8: हाँ जी मैम, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? हम तो संजय कुमार बोल रहे हैं, मऊ जिला उत्तर प्रदेश से। मैम
7: जी, जी संजय जी, मैं चंदन लता बोल रही हूँ।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बहुत दिन के बाद हमारी बातचीत हुई।
7: जी कैसे हैं आप?
8: कैसी हैं मैम?
7: जी हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं?
8: हम तो अच्छे हैं मैम, और जो है कि यही जो है पौधरोपण अभियान चल रहा है।
7: जी जी, एक और बात है, आज आपको पता है कि नहीं कि विश्व रक्तदान दिवस है आज?
8: जी जी जी जी जी मैम।
7: क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
8: आज विश्व रक्तदान दिवस में मैं एक कैंप लगा है, रक्तदान जो है सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं मैम मऊ जिले में।
7: जी जी
8: जी, हम लोग भी वही पे लगे हुए हैं।
7: जी तो आप रक्तदान किए हैं कि नहीं?
8: नहीं मैम।
7: क्यों?
8: एक बार कर लेते हैं 6 महीने में एक बार।
7: जी जी, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 3 महीने बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें।
8: नहीं मैं, हम लोग को बता दिए कि थोड़ा कमजोरी रहता तो बोले कि भाई आप लोग 6 महीने में दीजिए।
7: जी कमजोरी नहीं आता है, वो 24 से 48 घंटे में वो खून आपका बन जाता है, शरीर कवर कर लेता है। जी
8: जी,
7: तो ये बहुत अच्छी बात है।
8: जी मैं आपके वही जो है कि एक एक बूंद से जो है कि सबकी जान बचाई जा सकती है।
7: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
8: आज मैं आपसे जो है हमारी बातचीत हो गई है तो मैं कोई अपनी पसंद का आज गाना हमको सुनवा दीजिए।
7: ठीक है, किस तरह के गाने पसंद करते हैं आप?
8: मैं हम या तो कुमार सानू का पसंद करते हैं या मोहम्मद अजीज का करते हैं।
7: चलिए हम आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये गीत, और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा।
8: ठीक कार्यक्रम में। नमस्कार।
7: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार
1: विनोद पांडे 32 बोल रहे हैं।
0: जी। विनोद जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक ठाक से मैडम, यही गर्मी का माहौल चल रहा है। गर्मी पर इसी से सब बचा के कहीं आना जाना होता है, आते जाते हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है हमारे
0: जी,
1: यहाँ।
0: गर्मी तो बहुत है, सब जगह गर्मी है।
1: हाँ हाँ तो मैडम जी, इसीलिए जो है कहीं जाना होता है तो बहुत सोच के जाना, जो आवश्यक काम होता तभी जाते, नहीं तो कोई काम नहीं रहता नहीं जाते। घर ही
0: जी जी
1: गर्मी से बचना के लिए घर
0: बिल्कुल,
1: ही खड़े
0: गर्मी से
1: रहते
0: बहुत
1: हैं।
0: बच के रहने की जरूरत है।
1: तो कोई फरमाइश ले लीजिए मैडम जी।
0: हाँ बिल्कुल, फरमाइश लेंगे। पहले ये बताइए, आज आपको पता है कि आज विश्व रक्तदान दिवस है?
1: रक्तदान दिवस जो है वहाँ जो है हर मेडिकल अस्पतालों पर जो है हाँ शिविर का आयोजन हुआ है।
0: जी।
1: जो छोटा अस्पताल से मतलब कोई स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ या और कोई बड़ा चिकित्सालय हुआ, सब पे एक इसका शिविर आयोजन किया गया है
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: जो बस्ती में हुआ है।
0: जी तो ये बताइए, आपने
1: हाँ
0: कभी रक्तदान किया है कि नहीं?
1: मैडम जी, अभी तक कभी नहीं किया, आपसे
0: नहीं
1: गलत
0: किए
1: नहीं
0: हैं?
1: कह रहे हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: हाँ
0: मौका लगे तो जरूर करिएगा।
1: हाँ ठीक, मैडम आउट करेंगे मैडम जी।
0: हम रक्तदान करके किसी एक की जान बचा सकते हैं,
1: हाँ
0: किसी के काम आ
1: हाँ हाँ
0: सकते
1: मैडम
0: हैं।
1: जी,
0: तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: बैजू बावरा फिल्म हो गाने को बोल है, तू गंगा की मौज में यमुना की धारा हो रहेगा मिलाने हमारा तुम्हारा।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाँ नमस्ते मैडम जी, आपको नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश,
1: संत कबीर नगर से बोल रहा हूँ
0: जी। हेलो
1: रवि वर्मा।
0: तो रवि जी क्या करते हैं आप?
1: ये खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, रक्तदान के बारे में कुछ जानकारी है आपको?
1: थोड़ा बहुत है जानकारी।
0: अच्छा, तो आज रक्तदान दिवस है ना, विश्व रक्तदान दिवस।
1: हाँ
0: तो कभी रक्तदान भी किए हैं आप?
1: अभी तो हमारे उम्र ज्यादा है ना।
0: अच्छा, रक्तदान को महादान कहा जाता है ना। हम रक्तदान करते हैं तो उससे किसी की जान बचती है, किसी की मदद
1: हाँ,
0: होती
1: ये
0: है
1: तो आप सही बात
0: जी। और ये गलत धारणा है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जितना खून निकलता है वो आपका कुछ ही दिनों में बन जाता है।
1: हाँ, ये तो बात सही
0: तो
1: बात
0: आपने नहीं किया है, लेकिन आप किसी को बता सकते हैं, किसी को प्रेरित कर
1: बिल्कुल।
0: सकते
1: क्यों
0: हैं रक्तदान करने के लिए, है ना
1: क्यों नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल।
0: जी। तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: नील कमल फिल्म का गाना कोई भी सुना लीजिए।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से।
0: जी, कैसे हैं
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी? हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी मैम,
0: तो आज ये पता है आपको कि आज विश्व रक्तदान दिवस है?
1: जी मैम, हमने करा भी है ना मैम, तो हमको तो पता है।
0: जी, रक्तदान आपने किया है?
1: जी मैम, सुबह ही मॉर्निंग में 8 बजे हमने रक्तदान
0: जी,
1: किया।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया काम आपने किया है। रक्तदान को
1: जी
0: महादान कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: मैम।
0: आपने महादान किया है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा अनुभव होता है रक्तदान करके?
1: अच्छा महसूस हो रहा है मैम। देखिए, मैं लगभग 20 साल की उम्र से रक्तदान करता आ रहा हूँ।
0: जी, तो आपको कोई दिक्कत होती है?
1: नहीं मैम, 3 महीने के बाद मैं हर बार देता हूँ, तीन
0: जी
1: महीने के बाद हर बार देता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, कई लोगों के मन में धारणा होती है कि कमजोरी आ जाती है, तो आप
1: नहीं आती मैम, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो दुबला पतला था, जब मैंने रक्तदान किया तो मैं अच्छा बॉडी बिल्डर हो गया।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप जो बता रहे हैं, ये बहुतों को प्रेरित करेगी रक्तदान के लिए।
1: जी मैम, ऐसा कमजोरी कुछ नहीं है। वो खून तो अपने शरीर में बनता रहता है, वो जो लोगों को जरूरत होती है तो उनको दे देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: बिल्कुल मैम, देखिए सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि आदमी ये सोचता है कि रक्तदान से दिक्कत होती है, दिक्कत कुछ भी नहीं होती है। थोड़ा सा हल्का सा उसमें सुन्नपन आता है
0: जी
1: हाथ में, जब अपन रक्तदान करते हैं तो कुछ नहीं है। और थोड़ा सा कॉफी पी लें एक।

0: जूस पी लें तो सही हो जाता है।
1: जी आपने बहुत अच्छी बात बताई।
0: और सबसे बड़ी बात मैम, हम लोग देखिए हमारा शरीर किसी के काम में आ सके तो ऐसा भी काम करना चाहिए, देह दान का संकल्प भी हम लोगों को लेना चाहिए मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहिए।
0: जी बिल्कुल मैम।
1: जी बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: मैम एक गाना है, मूवी है कल हो ना हो, इसमें एक टाइटल सॉन्ग है सोनू निगम जी की आवाज में, हर
1: जी
0: घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी जो है समा कल
1: जी
0: हो ना
1: जी
0: हो।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: अरविंद कुमार गुप्ता बोल रहे हैं,
0: जी अरविंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: महाराजगंज
0: जी
1: से। और सुनाइए हाल चाल मैडम।
0: जी सब ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है। बस
0: तो आज क्या हो रहा है?
1: ये अब धान की रोपनी होने वाली है।
0: अच्छा, अभी तो बारिश का इंतजार हो रहा होगा।
1: नहीं, नहर का पानी आया है, इधर नहर से होता है।
0: जी, तो हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हमेशा सुनते हैं, इस समय बंद चल रहा है कार्यक्रम आपका।
0: तो कैसे लगते हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम?
1: बहुत अब अच्छे लगते हैं।
0: तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: करण अर्जुन का सुना दीजिए, और बंधन तोड़ प्यार का बंधन है। हेलो,
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते
1: ठीक
0: हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: है।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं जय प्रकाश, भारती स्टेशन रोड बस्ती से। बढ़िया
0: जी, जयप्रकाश जी, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: ये मैडम, आप बताइए आप कैसी हैं और आपकी टीम के लोग कैसे हैं?
0: जी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
1: और
0: तो
1: काफी दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। जी,
0: जी
1: काम धाम है जनरल स्टोर का और
0: जी
1: आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं। जी
0: कैसे लगते हैं ये भी बताइए।
1: बिल्कुल बढ़िया ही लगता है।
0: जी, तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का है, लता जी का गाया हुआ, चलो सजना जहां तक घाटा चले।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: या नंद शुक्ला रघुनाथपुर।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताइए।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। कौन से गीत की फरमाइश है आज आपकी?
1: अरे एक गाना है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले,
0: जी
1: ये गाना सुना है।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: अरे हम इरशाद बोल रहे हैं।
0: जी। इरशाद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम बोल रहे हैं चेन्नई बाजार से।
0: जी
1: और बताइए क्या हाल चाल है।
0: जी सब ठीक है? आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं।
0: क्या करते हैं आप?
1: मेहनत मजदूरी करते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी, बहुत कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं। सारे
0: जी
1: कार्यक्रम
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: दिलवाले दुल्हनिया का सुना दीजिएगा। गाना मेहंदी लगा के रखना।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: तो दोस्तों, आज का ये सफर बस यहीं तक। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था शुभ्रदीप मिश्रा, नम्रता श्रीवास्तव और अभय का, और प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। तो दोस्तों, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए नई उम्मीद और नया जीवन बन सकता है। इसी संदेश के साथ अपनी दोस्त चंदनलता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: 0 5 5 1 2 2 0 5 3 8 6 Hello, Farmaish.
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश, लेकर आई थी चंदनलता दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KI

अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए ऑल इंडिया रेडियो।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दो तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब से कुछ ही क्षणों में सुनेंगे आप।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राकेश उपाध्याय के गाए कुछ लोकगीत।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुन रहे थे राकेश उपाध्याय के गाए लोकगीत। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज। संगीत है प्रीतम का, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और फिल्म है दिलवाले।

चलिए एक बार फिर सुनते हैं अरिजीत की आवाज में अगला गीत, पर इस बार उनके साथ है चिन्मयी श्रीपदा। इस गीत को लिखा है अर्शाद कामिल ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का और फिल्म है गुड्डू रंगीला।

0: Let's take a short break.
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: आई एम हियर तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
5: दिमाग चार्ज कर अपना
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
5: देखा
4: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
6: अब क्या करोगे
4: तेरी वाईफाई है ना
5: बुद्धू सुधर जा
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स केबल की जरूरत भी नहीं
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की
10: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus
9: For details, log on to www.ddindia.com
11: Rica starrarira cucaru Rica starrarira cucaru

गुलराज सिंह की आवाज़ आप सुन रहे थे। संगीत था शंकर एहसान लॉय का और साथ ही गुलराज सिंह का। इस गीत को लिखा था मनोज यादव ने और फिल्म थी उंगली। चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है समंदर। तनिष्क बागची ने संगीत दिया है, बोल है अरफात महमूद के और आवाजें हैं श्रेया और जुबिन नौटियाल की। फिल्म है किस किस को प्यार करूं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: इसी के साथ फिल्म संगीतकार कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच, जिसे लेकर आ रही हैं मेनका श्रीवास्तव।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल मंच।
2: जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद दीदी।
2: तो तैयार हैं आप सब मस्ती, ज्ञान और ढेर सारी नई नई बातों के लिए?
3: हाँ दीदी।
2: हम बातें शुरू करें उससे पहले आप सब अपना परिचय दीजिए, किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम अनिका है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम अनुष्का है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम अग्रिमा है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम वरदा है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
2: और मैं हूँ आप सबकी दीदी मेनका दीदी। तो जोरदार तालियां हो जाए आज के कार्यक्रम के लिए। अच्छा ये बताइए आप लोग कि आप सबकी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं?
4: बहुत अच्छी।
2: घर पे रह के मजा आ रहा है?
4: हाँ।
2: स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता है तुम्हें?
4: अच्छा लगता है।
2: और अच्छा ये बताओ कि आप में से कौन कौन इन छुट्टियों में घूमने गया था?
4: दीदी मैं।
2: सब लोग गए हैं घूमने के लिए, कहाँ गई थी?
4: दीदी मैं मुंबई गई थी।
5: दीदी मैं मथुरा गई थी।
6: दीदी मैं नानी के घर गई थी।
2: और वर्धा कहाँ गई थी?
5: दीदी मैं कहीं ही गई थी।
2: घर पे ही थी, इसीलिए इसे बोरियत हो रही है घर पर, है ना? इसका मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। अच्छा ये बताइए कि आप में से कोई दादी के घर गया, कोई नानी के घर गया और कोई दूसरे शहर की सैर पर गया था। अच्छा बच्चों जब आप घूमने गए थे तो आपने वहाँ क्या देखा? कोई पुराना किला, महल, स्मारक देखा?
4: हाँ दीदी।
2: तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि ऐतिहासिक विरासत यानी कि हिस्टोरिकल हेरिटेज का मतलब क्या होता है, ये क्या होती है?
5: दीदी मैं बताऊं?
2: बताएगी वरदा। पहले तो वरदा तुम मुझे अपने नाम का मतलब बताओ, किसका मतलब क्या होता है?
5: दीदी मेरा नाम सरस्वती माँ के नाम से डिराइव किया गया है।
2: इसका मतलब कि वरदान देने वाली माँ सरस्वती है ना?
5: हाँ दीदी।
2: हाँ तो अब बताओ हमें कि ये ऐतिहासिक विरासत क्या होती है?
5: हिस्टोरिकल हेरिटेज का मतलब है हमारे देश के पुराने किले, महल, मंदिर, मस्जिद, स्मारक और ऐतिहासिक इमारतें जो हमें हमारे बीते समय की कहानियाँ सुनाती हैं, उन्हें ही ऐतिहासिक विरासत कहा जाता है। ये हमारी पहचान है और हमें अपने इतिहास से जोड़ती है।
2: बच्चों हमारे देश का इतिहास तो बहुत समृद्ध है, भारत में अनेक किले हैं जो हमारी गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। इन्हें देखकर हमें अपने देश की महान परंपरा, कला, वास्तुकला और इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलता है, इसलिए दुनिया भर के लोगों को ये हिस्टोरिकल प्लेस अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना?
3: हाँ दीदी।
2: क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी देखिए बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा अब आप में से कौन बताएगा कि कौन कौन सी हिस्टोरिकल जगहें आप लोगों ने देखी है?
4: दीदी मैं बताऊँ?
2: हाँ बताओ।
4: दीदी मैं ताजमहल गई थी, वहाँ का ताजमहल बहुत सुंदर है, उसके पीछे नदी जो है वहाँ पे अच्छा लगता है,
2: ठंडी ठंडी हवा भी आती है ना?
4: हाँ।
2: कितने देर रही वहाँ पे?
4: 1-2 घंटा।
2: वाह भाई बहुत टाइम तुमने स्पेंड किया। और कौन कहाँ गया था?
5: दीदी मैं रेड फोर्ट देखने गई थी, वहाँ जाकर इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।
6: दीदी मैं कुतुब मीनार गई थी, उसकी ऊंचाई देखकर मैं हैरान हो गई।
5: दीदी मैं फतेहपुर सिकरी गई थी, वहाँ की पुरानी इमारतें बहुत आकर्षक लगी।
2: अच्छा बच्चों ये बताइए जब हम इन जगहों पे जाते हैं तो हमें बहुत

0: कुछ सीखने को भी मिलता है। हम क्या क्या सीखते हैं यहाँ पर जाकर के?
1: दीदी मैं बताऊँ?
0: हाँ बताओ।
1: ऐतिहासिक जगहों पर जाकर हमें पुराने समय की इमारतें, किले, महल, स्मारक, मंदिर और उनसे जुड़ी रोचक कहानियाँ देखने सुनने को मिलती हैं। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उस समय की किला संस्कृति और वास्तुकाल कैसी थी। ऐतिहासिक स्थल हमें अपने देश के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर उनके पुराने कपड़े, उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन, उनकी बनाई हुई चीजें आज भी बहुत ही सुरक्षित रखी हुई हैं। जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था और वो लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। इसीलिए इन जगहों को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि अगर ये पुराने किले महल नष्ट हो जाएं, तो क्या हम अपने इतिहास को जान पाएंगे अगर ये चीजें सुरक्षित ना रहें तो?
2: नहीं दीदी।
0: इसलिए इन धरोहरों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे अतीत की अनमोल निशानियां हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखती हैं। अच्छा, आप में से ये बताइए कोई कि अगर इन दीवारों पर कोई कुछ लिख देता है, ठीक, या पत्थरों को तोड़ दिया जाता है, वहां पर गंदगी की जाती है, तो क्या होगा?
3: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ।
3: धीरे धीरे वहाँ धरोहर खराब होने लगेगी और उसकी पहचान मिट सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करें और उसकी देखभाल करें।
0: और वो हम कैसे कर सकते हैं?
1: दीदी हमारे देश में राष्ट्रीय धरोहर और ऐतिहासिक स्मारकों को देखभाल मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन और कई संस्थाओं भी इनके संरक्षण में योगदान देती हैं।
0: बिल्कुल, ये हमारी अमूल्य संपत्ति हैं। इन्हें सुरक्षित रखना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन सब का सम्मान करें, इनकी देखभाल करें, तभी हम अपने इतिहास और संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। रख सकते हैं ना?
2: हाँ दीदी।
0: तो आप सब ये वादा करिए कि आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो इन ऐतिहासिक जगह जहाँ पर किले, महल, स्मारक हो, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ गंदगी नहीं करेंगे, वहाँ की सुंदरता स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। करेंगे?
2: हाँ दीदी।
0: बच्चों याद रखिए कि हमारी धरोहर हमारी पहचान है और इन्हीं धरोहर, संस्कृति और परंपराओं को मिलकर ही बनता है हमारा प्यारा देश भारत। तो चलिए अब हम अपनी बातों को यहाँ पर रोकते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत। कौन सा गाना सुनना चाहोगे तुम सब?
3: दीदी आई लव माई इंडिया।
0: तो पहले गा के सुनो, फिर मैं सुनाऊंगी।

0: आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दीदी मेनका। ये गीत पसंद आया आप सबको?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए अब हम बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। अब समय हो गया है हमारे नए सेगमेंट का। हमारा नया सेगमेंट है नया शब्द नया ज्ञान। बच्चों, जब हम नया शब्द सीखते हैं तो वो शब्द हमें और भी स्मार्ट बनाता है। नया शब्द हमें नई सोच देता है और हमें आगे बढ़ाता है। हमारा आज का शब्द है जिज्ञासा। तो कौन बताएगा मुझे जिज्ञासा का मतलब?
2: दीदी मैं बताऊं?
0: अनुष्का बताएगी?
2: हाँ, हाँ दीदी।
0: अनुष्का बताओ।
2: जिज्ञासा को इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कुछ नया सीखने या जानने की उत्सुकता या ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। यह इंसानों का एक स्वाभाविक गुण है जो उन्हें खोज करने और नई चीजों के समझने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल सही। इसका मतलब कुछ नया जानने समझने और सीखने की इच्छा। बच्चों, जब आप पूछते हैं कि आसमान नीला क्यों है, पेड़ हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं, तो यही जिज्ञासा आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, हर नए आविष्कार की शुरुआत एक छोटे सवाल से होती है, इसलिए सवाल पूछने से कभी मत डरिए। जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो बच्चों, अपने मन में जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि जिज्ञासा ही सीखने और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। और अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए आप सब ने क्या तैयारी की है। क्या क्या तैयारी करके आए हैं आप लोग?
3: दीदी मैं कविता तैयारी करके आई हूँ।
0: अनिका सुनाएगी हमें कविता।
3: इस कविता का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय बोलेंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपनी पद कभी न छोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपने सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो अनिका के लिए। अनिका, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है?
3: इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हम नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
0: कुछ भी कर सकते हैं। कुछ सोचा है देश के लिए करने के लिए?
3: हाँ।
0: क्या सोचा है?
3: कि ये सब जो गरीब लोग रहते हैं बिना घर के, बिना कपड़े के और गाय, मैंने सोचा है कि एक मंजिला बनाऊंगी और उन सबको उसमें
0: रखूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अनिका ने तो बहुत अच्छा सोचा है कि जानवरों के लिए भी वो कुछ करेगी, गरीब लोगों के लिए भी कुछ करेगी। बहुत बढ़िया अनिका, जोरदार तालियां। और किसी ने क्या तैयारी की है?
4: दीदी मैंने भी एक कविता तैयार की है।
0: तो चलो वर्धा सुनाएगी हमें कविता। वर्धा स्टार्ट करो।
4: पत्थरों में आज भी इतिहास बोलता है, हर पुराना स्मारक एक कहानी खोलता है, किले की ऊंची दीवारें साहस का गीत सुनाती हैं, वीरों के बलिदान की याद दिलाती हैं, मंदिरों की नक्काशी में संस्कृति मुस्कुराती है, बीते युग की कला हमें अपनी परिचय कराती है, समय बदलता रहता है पर धरोहर रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देती है। आओ मिलकर प्रण करें, इसका मान बढ़ाएं, ऐतिहासिक विरासत को सदा सुरक्षित बनाएं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे टॉपिक से ही हो गया है ना, जोरदार तालियां।
4: दीदी मैं लक्ष्मी सहगल के बारे में बताना चाहती हूँ।
0: हाँ, तो हम सब जानने के लिए तैयार हैं और वर्धा बताएगी हमें लक्ष्मी सहगल के बारे में। वर्धा स्टार्ट करो।
4: लक्ष्मी सहगल भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक महिला सेनानियों में से एक थी। वे एक चिकित्सक, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी तथा इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की अधिकारी थी। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम साहस, देशभक्ति, सेवा का पर्याय है। ये महान हस्ती हैं लक्ष्मी सहगल, जिन्हें हम प्रेम से कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म 28 अक्टूबर 1914 को हुआ था। वे पेश से एक डॉक्टर थीं, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्हें अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सिंगापुर में उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी और वह

0: आजाद हिंद फौज से जुड़ गईं। नेताजी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं के एक विशेष सैन्य टुकड़ी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची देशभक्ति केवल संघर्ष में ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी दिखाई देती है। उनका साहस, समर्पण और नेतृत्व आज भी देश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: जोरदार तालियां हो जाए वर्धा के लिए। बच्चों, इन सब महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक हम नमन करें और इनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। और अब कोई कहानी भी लेकर के आया है?
2: दीदी, मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ।
1: तो अनुष्का हमें कहानी सुनाएगी। अनुष्का, कहानी का शीर्षक बताओ।
2: राजा और बंदर।
1: तो हम सब सुनने के लिए तैयार हैं कहानी। अनुष्का, स्टार्ट करो।
2: एक राजा के पास एक बंदर था जो उसका बहुत प्रिय सेवक था। बंदर हमेशा राजा के साथ रहता था और उसकी सेवा करता था। एक दिन राजा सो रहा था, तभी एक मक्खी बार बार आकर राजा के चेहरे पर बैठने लगी। बंदर ने उसे कई बार भगाया, लेकिन वह फिर लौट आती थी। बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही मक्खी राजा के चेहरे पर बैठी, बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चला दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा घायल हो गया। इस घटना से सबको समझ आया कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है।
1: जोरदार तालियां हो जाए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम दोस्त चुनते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए। आप सबके दोस्त कैसे हैं?
3: दीदी बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छे हैं? बेवकूफ तो नहीं है उस बंदर के जैसे?
3: नहीं।
1: अच्छा, ये बताइए, अच्छे दोस्त के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
3: अच्छे दोस्त के अंदर जैसे कि कोई दोस्त मुसीबत में पड़ जाए तो उसकी मदद करना चाहिए, और कोई दोस्त गलत रास्ते पे चले तो उसको सही रास्ते पे।
1: वाह, बिल्कुल सही बात है। अनिका को कितनी बड़ी बड़ी भाई बातें पता है ना। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, है ना?
3: हाँ दीदी।
1: और अब हम अपनी बातों को यहाँ पर रोकते हैं और सुनते हैं एक और गाना।

0: एक बार फिर बाल मंच कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दीदी मेनका। ये गीत पसंद आया आप सबको?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए अब हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जो कि है सवाल जवाब का राउंड। इसमें हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल। तो आप सब रेडी है जवाब देने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए सबसे पहला सवाल हमारा है अनुष्का के लिए। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? अनुष्का जवाब दीजिए।
2: पहली ट्रेन कोलकाता में चली थी।
0: बिल्कुल सही जवाब, और सही जवाब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल अनिका के लिए। अनिका बताएगी हमें कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं।
3: स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए अनिका के लिए। डरते डरते बोली हो लेकिन जवाब तुमने सही दे दिया। और अब हम पूछते हैं अग्रिमा से, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अग्रिमा आपके पास इस सवाल का जवाब है?
4: हाँ दीदी।
0: हाँ बताओ क्या है?
4: रशिया।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए अग्रिमा के लिए। अगला सवाल वर्धा के लिए है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था?
3: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ।
3: तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं।
0: वाह बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी?
3: झांसी की।
0: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। और अभी जो अनुष्का ने कहानी सुनाई थी हमें बंदर और राजा की, ये बड़ी ही फेमस कहानी है और ये किताब है पंचतंत्र की। तो आप में से कौन बताएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं बच्चों के लिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ। वर्धा बताएगी?
4: विष्णु शर्मा।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। और बताइए कि हैरी पॉटर वाली सीरीज किसने देखी है?
1: दीदी मैंने।
0: तो ये किसने लिखी है?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ।
4: जेके रोलिंग ने।
0: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। एक और किताब बहुत फेमस है वो इंडिया के बारे में, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन, कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ।
4: जवाहरलाल नेहरू।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां।
3: दीदी मैं जीके के सवाल लेके आई हूँ।
0: हाँ तो पूछो, हम सब जवाब देने के लिए तैयार है। आप सब रेडी है?
1: हाँ दीदी।
0: स्टार्ट करो।
3: कौन सा जीव है जो अपने सांस रोक के 6 दिन तक रुक सकता है?
0: ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी सांसें 6 दिनों के लिए रोक सकता है, बताइए कौन है?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ अग्रिमा।
4: बिच्छू।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। अनिका और भी सवाल लाई हो?
3: हाँ।
0: हाँ स्टार्ट करो।
3: दुनिया का सबसे महंगा खून किस जीव का होता है?
4: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ।
4: केकड़ा।
0: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाएं। तो इसी के साथ हम आज का बाल मंच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें, सवाल जवाब, नए शब्द और नई नई जानकारियां आप सबको पसंद आई होंगी। बच्चों याद रखिए, सीखना कभी बंद नहीं होता, हमेशा जिज्ञासु बनिए, सवाल पूछिए, नई नई बातें जानिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहिए। इसी के साथ अब हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। ये था हमारा आज का बाल मंच कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।

बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल मंच, जिसे लेकर आई थी मेनका श्रीवास्तव। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का नाम है गाने सुहाने।

0: कोई हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तीन देवियाँ, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। एसडी बर्मन ने संगीत दिया था और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। आइए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म है सीता और गीता, एक बार फिर से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़, आर डी बर्मन का संगीत है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।
2: अरे, ए, ए, ए, ए,
1: हेलो। हाँ दीदी। तो आपको याद आता है जब क्लोजिंग के टाइम क्लोज हुआ, अभी तुरंत खत्म हुआ है, एक गाना गया है। नहीं, बढ़िया से। हाँ हाँ हाँ, सब एकदम सही था, आपने डाला है, डेट डाला था ना, बच गया। अभी एंट्री नहीं की है, नहीं तो हम आपको नंबर भी बता देते। एंट्री नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ओके ओके ठीक है, बाय बाय
3: बाय। हवा के साथ साथ,
2: घटा
3: के संग संग,
2: संभलना।
3: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल।
1: हाँ बताइए, और कौन सा बताए? भवरे की गुंजन, भवरे की गुंजन है मैं। अच्छा हाँ, गाना देखना है ना। कौन सा देखें? भवरे की गुंजन देखें।
3: तीन दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
4: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में अभी आप मोहब्बत फिल्म का ये गीत।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अब जो आप गीत सुनने जा रहे हैं वो है विरासत फिल्म से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की, संगीत है अनु मलिक का और गीत को लिखा जावेद अख्तर साहब ने।

विरासत फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इसमें सबसे पहले सुनिए चंदन दास की गजल।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगीत बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिन्दुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकाती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूम फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत।
4: नारी जगत की सभी श्रोता बहनों को अनीता का नमस्कार। और बहनों आइए आज ढेर सारी विषयों पर चर्चा करेंगे, जानकारियाँ लेंगे। और आज पूरा विश्व रक्तदान दिवस मना रहा है बहनों, और यह दिन हर साल 14 जून को भी मनाया जाता है। बहनों इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। रक्तदान करना महादान होता है। रक्त देकर आप मानवता की अमूल्य सेवा करते हैं, और बहनों इसे निस्वार्थ भाव से कोई भी रक्तदान कर सकता है। इसीलिए बहनों यह दिन उन स्वैच्छिक और अवैतनिक रक्तदाताओं को समर्पित है जो अपने रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं। इस वर्ष की थीम है बहनों, रक्त दें आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। बहनों यह थीम दान की सामूहिक शक्ति को रेखांकित करता है। और बहनों यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि इस दिन को कार्ल लैंड स्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और उन्होंने ही इसे शुरू किया था। यह 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस शुरू किया था, जबकि इसकी नींव 1940 में ही रखी गई थी। इस दिन की सफलता ने स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षित रक्तदान का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों हर साल दुनिया भर में लाखों लोग रक्त और प्लाज्मा दान करते हैं, और इसीलिए इसे विश्व रक्तदाता दिवस भी कहते हैं। और सही बात है कि भाई हमारे अगर रक्त से प्लाज्मा से कुछ लोगों का जीवन बच जाता है तो रक्त दान करिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाइए। इसको आइए सुनते हैं एक साथ प्यारा सा गीत।

और बहनों, नारी आंगन की मुस्कान है, वो सृष्टि की आधार है वो। जी हाँ बहनों, नारी घर आंगन यहाँ तक कि पूरी सृष्टि की आधार होती है। और महिला अगर अस्वस्थ हो जाती है तो घर परिवार बच्चे सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल बहनों, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं और पूरे परिवार को भरपूर भोजन दे देती हैं, जबकि अपनी बारी आती है तो थोड़ा कुछ खा के काम चला लेती हैं, भरपूर संतुलित भोजन नहीं लेती हैं। परिणामतः शरीर में आयरन, हीमोग्लोबिन, विटामिन्स की कमी हो जाती है। एक और कारण महिलाओं में मासिक धर्म में रक्त की कमी, गर्भावस्था और खान पान में आयरन की कमी के कारण भी शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इससे शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, बाल झड़ना और सांस फूलने जैसी समस्याएं होने लगती हैं महिलाओं में। तो बहनों, अपने भोजन में आयरन से भरपूर आहार लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, खजूर, दाल और तिल जरूर शामिल करें। और बहनों, विटामिन सी से भरपूर जैसे संतरा, नींबू और आंवला भी अपने प्रतिदिन जो है जूस सेवन करें। चाय और काफ़ी भोजन के बाद तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इससे पाचन क्रिया पे असर पड़ता है। जी हाँ बहनों, आप अपना हीमोग्लोबिन की जांच भी हमेशा करवाती रहें और इससे पता चलता है कि शरीर में ब्लड का स्तर क्या है। और मुख्यतः शरीर

शरीर में एक महिला के 12 से 15% के बीच ब्लड भी होना चाहिए। तो सही बात है कि बहुत सारे कारण होते हैं जो महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और महिलाओं को अपने खान पान, अपने डाइट का हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर वह स्वस्थ हैं तभी जो है सारी चीज़ें ठीक ठाक से घर में चलती रहती हैं। और आगे चर्चाएं और होंगी, तब तक सुनिए प्यारा सा गीत।

बहनों, गाना तो बहुत ही प्यारा था। और आइए फिर चर्चाओं की तरफ चलते हैं, आपसे बातें करते हैं। तो बहनों, महिलाओं में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो क्या महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। और लेकिन यह पहले जरूरी है कि वो स्वस्थ हों। और एक स्वस्थ महिला जिसका हीमोग्लोबिन स्तर 12% हो और वजन 45 से 50 के बीच हो, तो आसानी से ब्लड डोनेट कर सकती हैं। ब्लड देने से पहले हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करवा लें, तभी ब्लड दें बहनों, ताकि बाद में थकान या चक्कर नहीं आए। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में रक्तदान करने से बचना चाहिए, कुछ समय के लिए रुकना चाहिए बहनों। पीरियड्स के दौरान भी ब्लड आप दे सकती हैं, इससे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कमजोरी या दर्द महसूस हो तो इसको टाल सकती हैं आगे के लिए। इसके अलावा भी गर्भावस्था या दूध पिलाने वाली माँ को रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि बहनों हाल ही में गर्भपात हुआ है या डिलीवरी हुई है, तो कम से कम 6 महीने तक आप रक्तदान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाएं तो ब्लड डोनेट करें। ब्लड देना तो बहुत ही धर्म का काम है, और इससे हर आदमी को ब्लड देते रहना चाहिए। 6 महीने के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

जी बहनों, लोगों में काफ़ी गलतफहमियां हैं आयरन और मिथक बनाम तथ्य को लेकर के, कि मासिक धर्म में ब्लड अधिक होता है तो कमजोरी होती है। ये काफ़ी मिथक है, और क्या सच है क्या गलत है, आइए कुछ इस पे भी जानकारी लेते हैं। बहनों, मासिक धर्म और एनीमिया के बीच जो है गहरा संबंध होता है, इसे लेकर लोगों के मन में काफ़ी गलतफहमियां हैं। तो आइए बहनों, जानते हैं कि क्या मिथक है और क्या वैज्ञानिक तथ्य है। जैसे कि पीरियड का खून अशुद्ध या जहरीला होता है। जी नहीं बहनों, पीरियड का खून गंदा या विषैला नहीं होता है। यह केवल गर्भाशय के टिश्यू, रक्त और म्यूकस का एक प्राकृतिक मिश्रण होता है। और ये भी मिथक है कि हर महिला को पीरियड्स में एनीमिया हो जाता है। सामान्य पीरियड्स में केवल 30 से 80 मिलीलीटर खून ही बहता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। स्वस्थ महिलाओं को इसमें एनीमिया का खतरा भी नहीं होता है। ये होता है ना कि अगर ज़्यादा ब्लड स्राव हुआ तो उससे एनीमिया की परेशानी हो जाती हो, तो ऐसे एक बिल्कुल गलत है। और ये भी मिथक है कि एनीमिया सिर्फ खराब खान पान से होता है। तो ये खराब डाइट एक कारण है, लेकिन भारी रक्तस्राव, हार्मोनल असंतुलन या फाइब्रॉइड की भी एनीमिया का एक मुख्य कारण हो सकता है। और देखिए,

पीरियड्स में थकान होना तो सामान्य बात है। हाँ जी बहनों, एनीमिया एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। यदि आपको अत्यधिक थकान, चक्कर, कमजोरी या त्वचा पीली पड़ रही है तो इसे नज़रअंदाज मत करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और ये भी मिथक है कि एनीमिया होने पर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, असल में शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स को प्रभावित ये करता है और इससे पीरियड अनियमित हो जाता है और कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो आप डॉक्टर को इसको ज़रूर दिखाएं। यदि आप बचाव भी इसके भी डॉक्टर को दिखाएं, दवाएं करें और कुछ बचाव भी करें। यदि आप मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव होता है अनुभव कर रही हैं तो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने के लिए आयरन युक्त आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, खजूर और अनार का प्रयोग करें प्रतिदिन, और विटामिन सी से भरपूर फल भी खाएं, दूध भी के पिएं और कैल्शियम भी लें बहनों। यदि बहनों पीरियड्स 7 दिनों से ऊपर चलता है और ज़्यादा खून आ रहे हैं या थक के आते हैं तो आप महिला डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप इसे सामान्य लक्षण नहीं हैं और इसे आप जो है ज़्यादा देर तक इसको मतलब इससे अनदेखा ना करें। डॉक्टर महिला डॉक्टर को दिखाएं। और भाई लक्षण तो बहुत सारे होते हैं, पीरियड्स में अगर सामान्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परेशानियाँ काफ़ी आगे बढ़ रही हैं तो इसको आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और बहनों अब तो चर्चाओं का दौर अभी चल ही रहा है तो चलते हैं रसोई की तरफ। और हमारे किचन में भी सारे भाई भरपूर तत्वों से भरी हुई चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आयरन से भरपूर कुछ स्नैक्स भी बनाते हैं और शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर बढ़ता है, थकान और कमजोरी होती है, तो इसको आप अपने पालक के कबाब, तिल गुड़ के लड्डू, भुने हुए कद्दू के बीज, मखाने, सूखे मेवे जो आयरन से भरपूर होते हैं, और काला चना भी आप ले सकती हैं, अंडे और नींबू आयरन को अवशोषित करते हैं, उबले अंडे भी प्रतिदिन लें, तो आयरन से भरपूर ढेर सारे खाद्य पदार्थ को अपने डाइट में लीजिए तो आयरन जो है शरीर में कम नहीं होगा, ब्लड का स्तर बढ़ेगा। इससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहां अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहां, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें क्या सुनाया, रात गली ख्वाब में आई।
0: हुई
1: वाह वाह वाह वाह वाह।

0: जी बहनों, गाना तो बहुत ही प्यारा चल रहा था, लेकिन हमारा समय समाप्त होता है प्रोग्राम का। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, लिए तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
5: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ।
4: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना।
5: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज सुनिए बातचीत, विषय है बेर की उन्नतशील प्रजातियों की बागवानी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
1: किसान भाई, बाग बगीचा लगावल खेती बारी के साथ बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर अपने क्षेत्र में आम, कटहल, लीची, अमरूद, बेल, आंवला यह तरह के लोग बागवानी व्यवसायिक स्तर पर करेला। लेकिन अब वो देखल जा तो तमाम ऐसा धार्मिक कार्य हुआ, अनुष्ठान हुआ, जौना में जरूरत पड़े ले चढ़ावे खातिर, खाए खातिर पत्ता का जरूरत पड़े ले औषधि महत्व है, उ है बेर, जौना के हमन का बैर के नाम से जानल जाला। एकर पौराणिक भी महत्व काफी है। बेर जंगली अवस्था में झरबेरी के नाम से भी जानल जाला। एकर बहुत महत्व है और जौन औद्योगिक महत्व है, तमाम तरह का कंपनी एकर उपयोग करेली। लेकिन आज हमन का बात कही जाये कि जौन बेर का उन्नतशील प्रजाति है, उनका नाव का है, उनका विशेषता का है, आप बदलत परिवेश में एमे कौना तरह का परिवर्तन कैल गेल बा कि अब ई सामान्य फल जैसे अमरूद बा, लीची बा, आंवला बा, आम बा, और तो और बेर का दाम कबो कबो तो सेब के बराबर भी देखे के मिल जाला, आ बड़ा कम मात्रा में बड़ा कम समय खातिर आवेला। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं, यही से संबंधित जानकारी देवे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप हैं प्रभारी अधिकारी राजकीय औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर जनपद झांसी में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
2: धन्यवाद।
1: अपने यह पूर्वांचल में बेर की खेती का भविष्य का बा, जरूरत का बा, आ एकर का महत्व बा औद्यानिक फसलन में?
2: आपको पता ही है धीरे धीरे हमारा समाज जैविक खेती तरफ जा रहा है, और जो आपने नाम लिया अमरूद वगैरह का, आम वगैरह का, इनके फलों को बचाने के लिए बार बार दवाई डालनी पड़ती है। खासकर अगर अमरूद की बात करें तो बरसात के मौसम अभी आने वाला है, इसमें फ्रूट फ्लाई बहुत बड़ा अटैक करता है। तो इस तरह से ये जो जहाँ तक बेर की बात है तो इसमें कीड़े और बीमारियां कम लगते हैं, और ये जो है अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम सेवा भी किया गया तो भी इसको जो है इसी खेती करना जो है बड़ा आसान रहता है। यानी अगर मिट्टी कमजोर है, बलुई दोमट है या जो है पठार टाइप का है, कमजोर मिट्टी में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका स्कोप जो है बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि इसका बहुत धार्मिक महत्व है, खासतौर से शिवरात्रि के समय शंकर जी को चढ़ाने के लिए या जो है व्रत वगैरह में उपयोग के लिए, इस तरह से कमर्शियल भी इसका उपयोग है। हमने आपको ऐसे इसके पहले बात किया था कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में जो कलरिंग होती है इसमें भी बेर का उपयोग करते हैं, सूखे सूखे फलों का। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, और इसका सूखे फलों का पाउडर बना करके अगर मान लीजिए इस कर्वी की समस्या है तो उसमें भी इसका पाउडर का घोल जो है अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसे राहत मिलती है, और इसमें कैलोरी कम होता है। तो जो मोटे लोग हैं हमारे देश में, अभी आया था पेपर में, नीति आयोग ने चिंता व्यक्त किया कि भारत में मोटापा बढ़ रहा है, तो मोटापा कम करने में भी एक सहायक है ये, जिसके फल खाने से मोटापा कम हो सकता है, और एंटी कैंसरस है, और जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो इस तरह से इसका जो है मधुमेह में भी फायदेमंद है ये। तो इसका औषधि और धार्मिक दोनों तरह का महत्व है, तो इसका जो है बहुत अच्छा जो है संभावना है। और हमारे यहाँ झांसी में तो सर इसका जो है चॉकलेट बन रहा है, कैंडी बन रहा है, कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। एक जो है तोमर मैडम है वो बना रही है यहाँ पे, उनका इसमें पूरा नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, शिवानी मैडम। तो इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने जो है MBA वगैरह कर रखा है, ये जो है स्वतः अपना उद्योग लगा करके इस पे बेर पे काम कर रही है यहाँ पे झांसी में।
1: हमारे पूर्वांचल में जौन उसरीली भूमबा, जौन ऊंच नीच भूमबा, जौन नदी के किनारे का बा जहाँ पानी ना पहुंचेला, लेकिन इतना उबड़ खाबड़ बा जहाँ की सामान्य खेती ना कही जा सकेला, कोनो फसल ना लिहल जा सकेला, कुछ भट्ठा का जमीन है, कुछ ऊसर है, कुछ रेह है, तो ये हमें एकर खेती बढ़िया से कही जा सकेला?
2: जी सर, बहुत अच्छा है। अच्छा? सर, इसमें जो फूल निकलता है सर, और वो निकलता है सितंबर के महीने में, तो उसमें जो है मौसम अच्छा रहता है, उसमें नमी पर्याप्त रहती है सर। इसका फल पकते पकते धीरे धीरे मौसम जो है शुष्क होता है, लेकिन फिर भी मिट्टी में नमी पर्याप्त रहती है सर। तो इसकी खेती में जो है बहुत कम से कम देखभाल में इसकी खेती अच्छी हो जाती है।
1: अच्छा एक बात बताएं कि एकर का फर्दा बाग अलग से लगावे के चाहिए या कहीं किनारे जमीन पड़ल बा तो ओके बाग के किनारे लगावे के चाहिए, या कोना हिसाब से आप लोग एकर खेती कईला का सलाह देला?
2: सर हम तो इसको राय देंगे अलग से इसे खेती की जाए, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं,
1: अच्छा
2: इसकी खेती अलग से ठीक रहेगा।
1: एकरे खातिर प्रजात कौन कौन है?
2: सर प्रजातियां जो हमें जब बस्ती में थे तो हमने देखा था कि सबसे पहले जो प्रजाति पकती है वहां बस्ती में उसका नाम है दिल्ली गोला या गोला,
1: अच्छा
2: तो ये सबसे पहले पक जाती है। लेकिन सर जो है ये जो थाईलैंड वाली बेर आई है ये उससे पहले पक जाती है, दिसंबर में पक जाती है। तो जो है दिसंबर से लेकर के जो शिवरात्रि तक या उसके बाद तक इसके फल मिलते रहते हैं, तो संभावनाएं अपार हैं हम जो है दिल्ली गुलाब से लेकर के थाईलैंड वाली बेर भी पैदा कर सकते हैं। और तमाम प्रजातियां हैं, जैसे बनारसी कड़ाका है, सेब है, छुहारा है, थार सेविका है, थार भृगराज है, तो थोनलेस जोधपुर थोनलेस है, गोमा कीर्ति है, सर बहुत सारी प्रजातियां हैं सर। लेकिन अर्ली के लिए जो है आपका थाईलैंड वाली बेर, और उसके बाद जो है दिल्ली गोला या गोला, और लास्ट में जो है सबसे देर पकती है उमरान हो गया, बनारसी कड़ाका हो गया।
1: अच्छा आप लोग औद्यानिक शोध प्रशिक्षण केंद्र में काम करे ली तो ए पर काम कौना तरीका से होत बा कि फलत बढ़िया मिले और एकर पौधा का रोपण कितना कितना दूरी पर करे के चाहिए?
2: सर जहाँ तक बेर की बात है तो जो है एक सामान्य सलाह यही है कि इसको जो है 6 मीटर पेड़ से पेड़, लाइन से लाइन, या 8 मीटर पेड़ से पेड़, लाइन से लाइन लगाया जाए। हमारे किसान भाई जो है इसमें एक जो है कमी कर देते हैं कि फल को तोड़ने के बाद जो है उसका जो है प्रून नहीं करते हैं।
1: कटाई छटाई
2: हाँ
1: टहनी
2: हाँ
1: का
2: हाँ बिल्कुल। तो सर फल तोड़ने के बाद अप्रैल के महीने में या मई के महीने में अगर जो है 50% जितनी डाली लंबी हुई है निकली है नई नई डालियां, 50% जरूर काट देना चाहिए। और जहां तक थाईलैंड बेर की बात है सर, तो ये तो जो है 2-3 इंच छोड़ करके पूरा पूरा जो है डाली काट देते हैं, तो नई नई डाली निकलती है। और इसमें सर बेर में जो है इसका फिजियोलॉजी है कि इसमें नए नए जो डाली निकलती है, शूट निकलता है, उसी में फ्लावरिंग शूटिंग होती है।
1: अच्छा तो कहला का मतलब कि चाहे 8 × 8 मीटर पर चाहे 6 × 6 मीटर पर जौन प्रजाति है ओकर रोपण करी, लेकिन एकरे पौधा के कटाई छटाई करके आकार नियंत्रित करी ताकि तोड़ा समय ओकरे निराई गुड़ाई करे समय सुविधा होखे।
2: सर थाईलैंड जो बेर है इसमें इसको तो लगाते हैं लाइन से लाइन 2 मीटर, पेड़ से पेड़ 2 मीटर, 1 मीटर
1: अच्छा
2: जी, लाइन से लाइन 2 मीटर और पेड़ से पेड़ 1 मीटर लगाते हैं इसको, थाईलैंड बेर को।
1: हाँ आप लोगन के क्षेत्र में संस्तुत जोन प्रजात जोना के लगौला का पौधा उपलब्ध हो पावेला, प्रदर्शन आप लोग करेनी, कैसे उपलब्धता बा एकर?
2: सर यहाँ पे जो हमारे अधीक्षक थे पिछले पिछले साल में, अभी तो उनका जो है DD अभी हैं वो श्री विनय कुमार यादव जी, ये आए थे फिरोजाबाद से। तो इन्होंने जो है जो पिछले वित्तीय वर्ष बीता है, जुलाई अगस्त बीता है, तो फिरोजाबाद से मंगवाए थे पौधे ये, और
1: अच्छा
2: किसानों को जो है 60 रुपये में दे रहे थे एक पेड़। और जो है सर उम्मीद है कि हम लोग आगे चल के इसके पौधे बना पाएंगे, लेकिन फिलहाल सर प्राइवेट में जो है इसके पौधे मिल रहे हैं। सर हमने सहारनपुर जहाँ थे तो वहाँ पता किए थे, तो वहाँ तो सर जो है थाईलैंड बेर का एक पौधे का दाम बता रहे थे 350 रुपया
1: कहला
2: प्राइवेट
1: का
2: में।
1: मतलब ये बा कि अपने जिला में जौन जिला उद्यान अधिकारी हवा
2: जी
1: बेर की खेती करे खातिर पर्याप्त मात्रा में उनके पास सूचना बा, पौधा उपलब्ध करावला के बारे में भी जानकारी दे सकेला, आ केंग केंग एकर खेती करे के चाही कि पुरहर जानकारी मिल सकेले। लेकिन यह साल बेर के खेती करे खातिर भले आदमी 10 पेड़ लगावे 5 पेड़ लगावे लेकिन मन जरूर बनावे, कहां से कि बेर का खेती बा या बागवानी बा एकदम से लगा दिया के बाद लगभग निःशुल्क बा, कोनो में लागत नहीं लगे वाला बा।
2: जी
1: डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह आप इतना बढ़िया जानकारी देनी कि बेर के खेती कैला से लाभ का बा, एकर प्रजात कौन कौन बढ़िया है, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: किसान भाई अभी सुन रहे थे वार्ता, विषय था बेर की उन्नतशील प्रजातियों की बागवानी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले होंगे।

0: मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
4: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रसारण सेवा केन्द्रबाट बोलिरहेछौं। र अब प्रस्तुत छ लोक तथा आधुनिक गीत, त्यसअघि सुन्नुहोस् यो छोटो व्यापारिक सन्देश।
1: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताहरू, अब प्रस्तुत छ लोक तथा आधुनिक गीत। प्रथममा लिएका छौं आधुनिक गीत पवन गोलीको स्वरमा।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा,
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला।
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा। हाँ जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसे ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी। हाँ,
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई
0: दुनिया
1: थी।
0: बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो,
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप
1: हाँ,
0: जी ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरती
1: कि
0: के साथ।
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें
1: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर
0: बहुत
1: से गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है
1: हर
0: ये, हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला, और वो फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, काले नहीं, सफेद
0: सफेद। हाँ हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, दो तीन साल की या चार साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
0: जी
1: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई
0: जी
1: सिखाने में।
0: जी जी
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
0: आपकी
1: होता है
0: डेस्टिनी
1: आपके,
0: में।
1: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
0: अच्छा
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
0: जी जी
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया
1: मकसद
0: आपको।
1: मिल गया,
0: जी
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
0: बिल्कुल
1: आपका जीवन बदल जाता
0: बदल
1: है।
0: जाता है।
2: सुख

0: साफ तो कभी था।
1: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते।
1: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी,
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
2: वही तो, वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको आर्ट... आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी,
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं

0: खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है मेरी वो है तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: दी बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी
0: नहीं,
1: कला को एक कला कृति रहने दिया है।
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप
1: जो
0: है वो
1: हुनर
0: कम हो
1: है
0: जाएगा, तो
1: हाँ।
0: इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: वो
1: जी
0: वैसे ही रहता है वहां पर।
1: जी
0: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
1: जी
0: लिए
1: बिल्कुल
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप।
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: आसमान की बात कर
1: बात
0: रहे
1: कर
0: हैं।
1: रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट
0: है, इस तरह का, सभी तरह के आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपना पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, आपने बताया कि आप इतनी प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार के सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम।
1: हाँ, हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, तो ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आप

0: बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत
0: जी
1: मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूं।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
1: जरूर
0: ना दे दे
1: सुनवाइए।
0: चोली।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी।
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

0: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है,
1: जी
0: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति

0: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी आ रही है, फिर अचानक से बारिश आ रही है, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए और चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। दोस्तों, सफल वही होता है जो समय के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। अर्थात दोस्तों, कड़ी मेहनत से केवल सफलता नहीं मिलती है। हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या हम अपनी दिशाओं को बदलते हुए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिशा में चलते रहेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, समय के अनुसार अपने में परिवर्तन, आत्मचिंतन और अपने कौशल को बढ़ाने का काम अगर रुक रुक के किया जाए तो आप सफल ज़रूर होंगे। इसीलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य हमेशा एक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। चलिए इसी से संबंधित आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं आज, क्योंकि आपको तो पता है कि हर रविवार के दिन आपको एक कहानी सुनाई जाती है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है दो लकड़हारे।

लकड़हारों की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी दोस्तों, तो मैं आपको इसी से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गांव था जहाँ पर दो लकड़हारे रहते थे। दोनों जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों के बीच एक शर्त लगी कि कौन लकड़हारा अधिक लकड़ियाँ काट कर जंगल से ले आएगा। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल पहुँच गए। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार पेड़ काटता रहा, लगातार लकड़ियाँ काटता रहा, और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा लकड़हारा था वो बीच बीच में कुछ समय के लिए विश्राम कर रहा था। पहला लकड़हारा उसे देखकर मन ही मन खुश होता रहा और सोचता रहा कि वह तो आराम कर रहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। शाम को जब लकड़ियाँ सभी दोनों लकड़हारे लेकर के आए तो लकड़ियों की गिनती शुरू हुई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जो लकड़हारा बीच बीच में आराम कर रहा था उसने अधिक लकड़ियाँ काटी थीं। पहला लकड़हारे ने हैरानी से पूछा कि अरे भाई, मैं तो पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा और मैंने तुमको देखा था कि तुम बीच बीच में आराम भी कर रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि तुमने मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटी। दूसरे लकड़हारे ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, जब भी मैं विश्राम कर रहा था उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था, उसकी धार को तेज कर रहा था, इसलिए मेरा हर वार तुम्हारे वार से अधिक और ताकतवर था। यह बात सुनकर पहला लकड़हारा अपनी गलती समझ गया। उसने जाना कि केवल लगातार मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं को समय समय पर बेहतर बनाना भी आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से ही मिलती है। यदि हम अपनी शिक्षा, ज्ञान, कौशल और सोच को लगातार निखारते रहें तो हम कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में भी विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई व्यवसायी, सभी के लिए यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालना चाहिए सीखने के लिए, आत्मचिंतन के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अवश्य थोड़ा समय देना चाहिए। यदि निरंतर सुधार हम करते रहेंगे तो सफलता के शिखर पर हम पहुंचते रहेंगे। मेहनत के साथ साथ स्वयं को लगातार बेहतर बनाना भी सफलता की कुंजी होती है। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत। आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, सभी नागरिकों को समान अवसर और विकास का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराना और विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाओं और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी के साथ ही महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक प्रयास किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में समानता और सौहार्द बनाए रखना भी है। दोस्तों, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विकास की मूलधारा में जोड़ना तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना इसकी मूल भावना है। सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य, आवास हो, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, इन जैसे क्षेत्रों में इसकी सकारात्मक भूमिका देखने को मिलती है। हम सभी का दायित्व है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, इसी के साथ प्राप्त लोगों तक उनकी, जो इसके लिए बने हैं, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाने में सहयोगी भी बने। तभी जाकर समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित हो सकता है, सशक्त हो सकता है और आत्मनिर्भर बनेगा। तभी देश का समग्र विकास संभव है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह कार्यक्रम एक ऐसा भारत का निर्माण कर सकता है या एक ऐसे भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में। आइए इन्हीं जानकारी के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

你和你就在这儿满城。

0: दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, चाइना में आराम करो।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से गीत। चलिए अपने बातचीत की तरफ चलते हैं और हम लोग बात करेंगे विश्व रक्तदान दिवस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान होता है। अभी इसके विषय में हम लोग एक लंबी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल लेंगे, उसके बाद फिर से हमारी बातें शुरू होंगी और गानों का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान, अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुनन, गोरखपुर।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B Pharma, M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।
1: दोस्तों आइए बातचीत की तरफ चलते हैं और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 14 जून को पूरे विश्व में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना है तथा लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों रक्तदान एक ऐसा महाकार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है, इसीलिए हम इसे महादान भी कहते हैं। रक्तदान का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, रक्त का कोई भी कृत्रिम विकल्प नहीं है। किसी दुर्घटना, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन, प्रसव या किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में रोगी को रक्त की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाताओं द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होता है। दुर्भाग्यवश आज भी अनेक लोग रक्तदान को लेकर विभिन्न भ्रांति के शिकार हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरीके से सुरक्षित है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेती है, इसीलिए योग्य और स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे खुद स्वयं से होना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं भी हर 3 महीने के बाद रक्तदान करता ही करता हूं। हर 3rd महीने के बाद रक्त अपने आप पूर्ण रूप से बन जाता है। अच्छा, रक्तदान करने के कुछ अपने भी फायदे हैं। जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो नई कोशिकाओं, जब हम रक्तदान करते हैं तो जो रक्त निकल जाता है उसकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं, तो हमारा जो रक्त है वो साफ और पहले से बेहतर होता है। यदि युवा वर्ग रक्तदान के लिए प्रति व्यक्ति को जागरूक करने का कार्य करेगा तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म ही हो सकती है। तो चलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों को भी इसके लिए जागरूक होना है। बच्चों को साथ साथ जो युवा वर्ग है उन्हें इसके प्रति जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान कर सकें और करें, ताकि विश्व में हमारे विश्व को साथ ही साथ भारत में भी किसी को रक्त के बिना किसी की मौत ना हो। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।
5: दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। आपको तो पता है बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी का समय हो चुका है जाने का। लेकिन जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन किस पर्वत क्षेत्र में होता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। दोस्तों आज का प्रश्न है कि रश्मि रथी पुस्तक के रचयिता कौन हैं। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पंचों जय हिंद। भैया हो देखा पंच भाई लोगन के बैठी लगल। भैया देखा आज रक्तदान दिवस है, भैया रक्तदाता दिवस जी के कहा जाला, और ये हो भैया विश्व रक्तदाता दिवस है।
4: सही कहा भैया,
3: पूरे संसार में यह दिन के भैया निःशुल्क रक्त अपने जौन भी लोग बाटे जिनके जरूरत बा रक्त के उनके मिले, यह नाते निःशुल्क रक्तदान कैल जा, एक दिवस हवे और इमें बढ़ चढ़ के लोग अपन पंच भाई लोग भाग लें, एकरे नाते ये दिवस भैया मनावल जाला।
4: भैया देखा ये दिवस 14 जून के ही काहे मनावल जाला, एकरे पीछे ये है जोन मैंने रक्त जोन दहले के जोन थी रल है प्रक्रिया रल है ओकर जोन बाटे महान वैज्ञानिक रहना कार्ल लैंडस्टाइन स्टाइनर, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस जोन बाटे मनावल जाला। और एकर शुरुआत जो 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO अपन कैलास, ये भी नहीं होला कि अपन स्वेच्छा से जिस बारे में मानी जबरदस्ती ना है स्वेच्छा से,
3: एकदम भैया देखा स्वेच्छा से और बिना कोनो पैसा ले ले, बिना कोनो लोभ लालच के अपन रक्तदान कैल जा। कहे से कि भैया देखा रक्त अगर ना रहे तो भैया जीवन ना बची। अब बहुत सारा दुर्घटना हो जाला जौन में देखल जाए अगर रक्त के कमी हो जाले तो लोगन के जिंदगी ना ही बचावल जा सकेला।
4: बहुत ऐसा समस्या घटना हो जाला जौन में रक्त के जरूरत पड़ला, अचानक समय से नहीं मिलने पर अपन बहुत बड़ा और अपन अपन का जो है हानि हो सकला अपनी।
3: एकदम भैया बहुत सारा ऐसा बीमारी भी बा भैया जौन में देखा रक्त के हमेशा जौन बा जरूरत पड़े ले बदल बदल के रक्त जौन बा चढ़ावल जाला, रक्त निकाल के फिर चाहे वो कैंसर हो जाला ब्लड कैंसर के जैसन रोग बा, यह सब चीज़ी में भी भैया रक्त के जरूरत पड़े ले और अगर रक्त न मिले तो भैया जिंदगी ना बच सकला।
4: हाँ यही ना तो भैया देखा हो जे भी 18 से लेके 65 साल तक ले उम्र के बाटा स्वस्थ शरीर बाटा
3: स्वस्थ शरीर है भैया,
4: अपन स्वेच्छा से अपन रक्तदान अपन कैसे।
3: अब ये देखा वो हमें एक चीज़ और बाना कि पंच भाई लोगों को हमें जाँच भी हो जाला अच्छे से, यो पता चल जाला कि कोनो रोग व्याध भी शरीर में
4: शरीर के हिसाब से अपन यो पता चल जाला। अनेक तरह से फायदा, यो फायदा वाला जैसे मान लो एक बार भाई अपन जैसे कहा जाए देख ले भैया गांव में पुराने जैसे गढ़ा बा गढ़ही बाट है पोखरा बा तालाब बा ओकर पानी अदला बदल जा रहा तो ओकर फ्रेश रहा पानी
3: भैया देखा एक बात वाला जैसे कुछ पंच भाई लोग ही सोचे लें कि भैया अगर खून निकल जाए ना तो जामन के कमजोर हो जाए जाए, लेकिन भैया ऐसा कोई बात ना होला। देखा ना जब अंगूरी कट जाला कुछ कट जाला तो खून गिर जाला, लेकिन फिर पता चला कि कुछ दिन में कुछ घंटा में ही शरीर अपन उतना खून बना ले जितना शरीर की जरूरत हो ले।
4: वह जैसे बताओ नहीं कि अपने एक बार अपने शरीर से अगर अगर खून दे दहल गए रक्तदान कर दहल गए तो बहुत तेजी से अपन कोशिका काम कर ले और बड़ा तेजी से होकर भरपाई अपन हो
3: जाला ब्लड कर
4: एमन अपन शरीर और जागरूक हो जाला और सक्रिय हो जाला, सक्रियता की स्फूर्ति चेतना अपन बढ़ जा रहा।
3: भैया देखा अमन के चर्चा चलत रही, हम चाहती पंच भाई लोग लगले हाथे वो गीत सुने भानु प्रताप के स्वर में।
5: चहके लचहु दिस चिर

0: हाँ पंच भाई देखल जा, भानु प्रताप के आवाज में, इतना बढ़िया अपन ये लोकगीत सुन लें पंच भाई लोन। भैया देखा जैसे बताई ना, अपने शरीर के स्वस्थ रखे खातिर अपन अनेक तरह का आदमी रहला, दवाई करला, दर्पण करला, सब व्यवस्था करला।
1: एकदम भैया देखा। लेकिन एक पंच भाई इहो जागरूक रहेला
0: हाँ
1: कि कवन दवाई ऐसन कैल जा भैया जौने से कि शरीर के हानि न हो और कोनो
0: हाँ
1: अंग के हानि न पहुंचे,
0: सही कह
1: केवल
0: रहा भैया।
1: जौने में रोग बा जवन अस्वस्थ शरीर बा वही भर के भैया
0: हाँ
1: निदान हो
0: भैया वह
1: जाए।
0: बतिया बता दें, जैसे अपन फायदा मतलब कपार पिराल भैया कौन दवाई खा लेना, पेट गर दर्द भर दवाई खा लेना, लेकिन भैया ओका साइड इफेक्टो होला बहुत
1: अरे
0: ज्यादा।
1: भैया एक ठूक के कहला दवाई करा और
0: हाँ
1: दूसर का भैया शुरू हो
0: दूसर का
1: जाला।
0: शुरू हो जाला। तो ऐसा कुछ अपने भारतीय जो बाटे परिवेश में ऐसा चिकित्सा में बहुत पुरान में अपन रल है कि अपन बाटे माटी और पनिए से ऐसा बाटे प्राकृतिक रूप से चिकित्सा अपन कई जाला।
1: अब भैया देखा पहले तो ऐसे होत रहा ना।
0: हाँ
1: अब भैया देखा आज वो देखल जा ते जौन जन्ना जानवर बाटे भैया कौन डॉक्टर लगे जाले
0: हाँ कहीं
1: जल्दी।
0: हाँ बस
1: हम तो
0: खाली जो
1: जानते टी
0: जो
1: जौन जियावल पशु रहे ना
0: हाँ
1: वह चाहो डॉक्टर लगे ले जाला
0: हाँ
1: सब।
0: कभी जरूरत पड़ा तो
1: हाँ
0: अपन गई ना सभी है,
1: हाँ
0: लेकिन कि जो अपन घूमत चाहे तो कबो कौन दवा दारू जरूरत है ना, बट उनके अपने मन वैसे ठीक होते हैं घूमत
1: तो
0: रहना
1: भैया
0: से।
1: प्रकृति में यह तरह के व्यवस्था बा, लगा ला कि यह तरह के व्यवस्था बा, ऐसन मट्टी बा, ऐसन कोनो खर पतवार भैया दूब घास बा जो उनकी अगर शरीर में जाता
0: भैया
1: तो
0: तू
1: भी उसे लाभ
0: देखले
1: मिल
0: हुए
1: जाता।
0: गाँव में अगर मान ल कुत्ता के मान ली वो देखो जाके कोनो खोर अपन बीन के वह खरवा खाई ठीक हो जाए, घूमत चरता अपन रही कोनो अपन खा ले ठीक हो जाए। तो भैया यही अपनी जो बात है प्रकृति में जो बात है का ऐसा बहुत प्रकार के ऐसा बात है कि खरपतवार बात है
1: हाँ भैया देखा
0: अपन।
1: हो तो आयुर्वेद वाला दवाई तो बहुत सारा ऐसा ही बना ला।
0: हाँ
1: हाँ
0: ऐसा होला अपने ही जो आस पास बाटे बहुत सी चीज अपन बाटे, ई होला भाई लोग जागरूक नहीं रहना कि कौन चीज से का फायदा
1: पहले तो
0: होए।
1: भैया जड़ी बूटी से बहुत सारा दवाई होता है।
0: हाँ यही नाते अपन कह जला कि अपन जौन पुरान जमाना में पर जड़ी बूटी से ही अपन होत रहना, लेकिन अब जौन धीरे धीरे अपन आ गए नया आधुनिक पद्धति में अपन अपनावे लगलन, लेकिन अभी भी अगर पुरनका जमाना में जा तो अपन जो माटी और मिट्टी से अपन जो प्राकृतिक चिकित्सा हो सकला ऐसे अपन शरीर निरोग रह सकला। तो हम चाहते हैं यहीं पर लगे जुड़े एक भेंट वार्ता अपने पंचवे के सुनवा दें डॉक्टर बिमल मोदी से, बीमा कुमार भैया बतियाओ, विनय कुमार भैया बतिया बतियाओ था ना अपन पंचवे सुने और लाभ उठावें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: पंच भाई जीव जंतु का प्रकृति से बड़ा गहरा नाता है। कहीं कभी प्राकृतिक वातावरण अपने अनुसार वहाँ जीव जंतु के उत्पन्न करेला। पूरा पृथ्वी पर अगर मनुष्य के बारे में सोचल जा तो जैसे अन्य जीवधारी हुआ जंतु हुआ वही तरह से मनुष्य भी हुआ अगर प्रकृति के साथ चलत हुआ तब। लेकिन विकास के दौर में या समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य समाज मानव समाज पूरा तरीके से रोग तरह तरह के शारीरिक जौन उनके क्रियाकलाप में उतार चढ़ाव आइल बा एकर सामना करत हुआ। जब बात कल जला अलग अलग पैथी के बारे में अलग अलग चिकित्सा पद्धत के बारे में। तो सब यह मिला जुला स्वर से कहेला कि ए बाबू, जे जितने प्रकृति से दूर रही ओके उतने रोग व्याध सताई, आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धत से चिकित्सा करे वाला वरिष्ठ डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, ये बताई कि जब आदमी पैदा होला तब से और अंत तक पूरा क्रियाकलाप पंच महाभूत के ही इर्द गिर्द घूमत रहेला। आज हमन का वह पंच महाभूत में से खाली दो चीज पर बात कर चाहे के, एक तो माटी और दूसरा पानी। प्राकृतिक चिकित्सा में माटी और पानी एकर का योगदान बा? पानी पिए वाला, नहाए वाला, शरीर के अंदर कितना एकर संतुलन रहे के चाही, पानी का सेवन कब कब करे के चाही, यही तरह से माटी का कितना हिस्सा, यही तरह शरीर का कितना हिस्सा माटी के संपर्क में रहे। हाँ, इतना जरूर कोशिश करे कि वह माटी बहुत संक्रमित न होके।
6: हमारे शरीर में 60% पानी है, इसलिए पानी की आवश्यकता हमेशा होती रहती है। पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध मिलना चाहिए, पानी से नहाना चाहिए। तो पानी पीने का ढंग ये होना चाहिए कि सुबह उठकर 1-2 गिलास पानी पिया जाए, खाने के आधी घंटे पहले पानी पिया जाए, जिससे भोजन करते समय प्यास न लगे। क्योंकि भोजन के साथ जब आप पानी पीते हैं तो पाचक रस पतला हो जाता है, भोजन मुश्किल से पचता है। इसलिए अगर आधी घंटे पहले पानी पी लेंगे तो भोजन के समय पानी पीना नहीं पड़ेगा। फिर भोजन के 2 घंटे बाद पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात को भी 2 घंटे पहले पानी पी लें। इस तरह दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए।
5: कम से कम
6: 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप मजदूरी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो उससे फिर 3 से 3.5 लीटर भी पानी पीना आवश्यक होता है।
5: डॉक्टर साहब, जैसे आप बतौली हैं कि खाना खैला के पहले पानी पी लेवे के चाहिए, लेकिन समाज में तो ठीक है करे उल्टा होला। लोग कहला कि पानी जब पी लेब खैला के पहले तो फिर खाना का खाइब, आ जब खाना खैला के बाद पानी पियला का बात आवेला तो लोग कहला कि देखा भाई पूरा खाना खा ले बानी, थोड़ा बहुत पानी पियल जरूरी बा, आ बाद में फिर पानी पियल भूला जाला, ऐसे पाचन प्रणाली पर का फर्क पड़ेला?
6: नहीं, पानिया पहले पी लेब तो कम खाइब, कम बीमार पड़ब, तली बुनी चीजें कम खाई जाएंगी। खाने के बाद पानी पीने से जो पाचक रस उस भोजन को पचाने के लिए शरीर निकालता है, पानी पीने से वो पतला हो जाएगा, भोजन मुश्किल से पचेगा। इसलिए भोजन करने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब भोजन में मिर्च मसाला नहीं होगा। क्योंकि मिर्च मसाला पानी की मांग करता है, क्योंकि हमारा शरीर उस मिर्च मसाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए पानी पी के उस मिर्च मसाले को हल्का करता है। अब आप एक बात देखें, जब आप मिठाई खाई ली तो आपके पानी पीने की जरूरत पड़ाला। ये इसलिए है कहें कि जब पानी पियल जाला तब वो मिठास हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए पानी पी के उसको पतला करता है उस मिठास को, तब शरीर रुक पाता है। इसीलिए पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
5: कहला का मतलब कि मिर्च, मिठाई, खटाई, तीखा कोनो ऐसा चीज बा, अगर ओकर सांद्रता ज्यादा बा तो जब तक ओके पानी से पतला न कर जाए तब तक शरीर के पाचन रस ऊपर काम ना करिए, जितना गाढ़ रही उतना बार बार पानी पियला का जरूरत पड़ी। अगर एकर मात्रा घटा दिया जा, मिठाई का, खटाई का, तेल का या तेज तीखापन मिर्च मसाला का, तो पानी के मात्रा के भी घटावल जा सकेला और पाचन के बढ़ावल जा सकेला।
6: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लीटर पानी पियल बहुत जरूरी बा।
5: अच्छा,
6: और ये बताई, पानी तो दुइये समय पियल जाला, जब मिर्च मसाला लगाला तो होकर हाय हाय शांत करे खातिन पानी पियल पड़ाला,
5: अच्छा जब मीठ लगे तब
6: पानी पिए जरूरत पड़ाला, नहीं तो प्यासे कहाँ लगाला। पानी की जरूरत है, इसलिए शरीर को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, चाहे प्यास लगे चाहे नहीं लगे।
5: अच्छा, जब गर्मी का महीना आ गई, जब ज्यादा आप मेहनत का काम करत नहीं, शारीरिक श्रम ज्यादा करत नहीं, तो ओकरे मांग के हिसाब से पानी का मात्रा बढ़ाओ करे के चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और बा कि पानी से नहाइल, पानी बहुत लोग कहला कि तमाम हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर अगर देखल जा, प्राकृतिक आधार पर देखल जा, तो ठेहुना भर, कमर भर, छाती के बराबर अलग अलग प्रक्रिया है स्नान कैला का, सरोवर में, बहत पानी में और सर पर पानी गिरा के स्नान कैला का पैर धोला के बाद बड़ा पतली धार से सर के ऊपर जौन चाँद होला जे के तालू कहल जाला बाद में भर जाला बचपना में जौन धक धक चलत रहला ऊपर भी लोग दोनों हाथ ऊपर करके और लोटा के पतले धार से पानी गिरा के स्नान कैला का बहुत लोगन के हम देखले हैं। का एकर भी कोनो स्वास्थ्य से संबंध है?
6: नहीं नहीं, खूब खूब संबंध है। जैसे हम बताएं, अगर शावर से पानी नहा रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी पे तेज धार से पानी हो। अगर तेज धार से पूरी रीढ़ की हड्डी पे गुजरेगा तो वहाँ का खून का दौरान बढ़िया होगा और सारा खेल रीढ़ की हड्डी से ही स्वास्थ्य का है, क्योंकि दिमाग से सारा नर्व्स रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग पे जाता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी हमारी स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ होगा। वैसे ये नियम है कि जब नदी में जाएं तो पहले पैर पे पानी पड़ेगा, जब बाथरूम में नहाएं शावर से नहाएंगे तो पहले सर पे पानी पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा ठंडे पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं जाड़े में कि गर्म पानी से नहीं नहाएंगे तो ठंडक लग जाएगी, हमको गठिया हो गया है ठंडे पानी से नहाएंगे तो दर्द हो जाएगा, पूरे शरीर में दर्द है ठंडे पानी से नहाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ठंडे पानी से ही नहाइए, आप खूब गर्म पानी से नहाइए, लेकिन आखिरी बार एक लोटा सर पे ठंडा पानी ज़रूर डालिए कि पूरा शरीर ठंडा हो जाए, तो आपको दिन भर तरोताज़ा एहसास होगा।
5: डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि नहैला का प्रक्रिया कुआँ बनला के बाद हैंडपम्प लगला के बाद या जैसे आजकल टंकी बा आप शावर का तनि बाथरूम का बात कर लिया तो ये तो बड़ा कम दिन का हमन का आकलन है या ये जो सुविधा उपलब्ध बा एकर हमन का सेवन कर जाला, लेकिन एकरे पहले नदी तालाब झील झरना एमे नहैला का प्रक्रिया रहला तो खुला में जो नहैला का बात रहला ओकर स्वास्थ्य पर का प्रभाव रहला? जबकि बहुत बड़े बड़े लोग जेकरे पास पैसा बा सुविधा संपन्न बना अब वो तालाब खुदवावतना या बड़े बड़े होटल में खुला पानी में नहैला का परंपरा अभी वही तरह से जारी बा, फर्क का बा?
6: नहीं, फर्क की बा पहले नदी में नहात रहली और शुद्ध हवा मिलत रहे, डुबकी लगौली, डुबकी लगौले के बाहर आईली शुद्ध हवा मिल और वो शुद्ध हवा खुद को तरोताज़ा करता है। अब बाथरूम में नहा रहे हैं तो वो हवा तो रहा नहीं, तो वो स्वास्थ्य तो नहीं मिल सकता जो नदी में नहाने में मिलता था। लेकिन अब उसकी प्रक्रिया लोग स्विमिंग पूल में कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल में नहा लीजिए, लेकिन स्विमिंग पूल भी कमरे बंद बनने लगे, खुले में बनना मुश्किल हो गया, तो नदी का नहाने का तो स्वास्थ्य का कोई जवाब ही नहीं है।
5: डॉक्टर साहब, आप लोग दो चीज़ पर विशेष बल देना कि एक तो पानी और दूसर का माटी। माटी आप प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे उपयोग करेला, कौन कौन तरीका अपनाएला?
6: हम लोग मिट्टी फोड़े पे मिट्टी लगाया जाए तो फोड़ा पक के आसानी से फूट जाएगा। पेट पे मिट्टी लगाया जाए तो पेट से कब्ज की मुक्ति मिल जाएगी,
5: कोष्ठबद्धता
6: से छुट्टी मिल जाएगी। पूरे शरीर में कहीं खुजली हो, कहीं दाद हो, पूरे सर से लेकर पैर तक आधा सेंटीमीटर मोटा मिट्टी लगा लीजिए, आधी घंटे धूप में बैठ लीजिए, फिर नहा लीजिए, सारी खुजली चली जाएगी, त्वचा चमकदार हो जाएगी, त्वचा में चमक आ जाएगी।
5: डॉक्टर साहब देखी, अब हम फिर एगो बात पूछल चाहब, असही में मन तो करते भाई बात पूछे के। देखी माटी कई तरह का बा, जैसे हमहू जब बहुत छोट रही स्कूल से छुट्टी होके तो जाइल जा एकदम छोट रहल गई तब लाज के तब मने कोनो बाते न रहे तो जंघिया आ बंडी दोनों निकाल के आ रेही में रगड़ के धूप में फैला दिया जा, एकरे बाद नहर में तालाब में कूद के नहाल जा आ फिर वो जब कपड़ा पहरल जा या वो कपड़ा से देह पोछल जा तो चमड़ी जौन बा ना एकदम रबड़ की तरह दिखे, इतना हाथ फेरला पर साफ सुथरा रहे और बड़ा अच्छा लगे अपना आपके। दूसर का कि जब गांव का बूढ़ पुरनिया महतारी लोग जब अपन बाल धोवें तो कहें एकदम काली मिट्टी जौन की धूप पड़ला पर एकदम चिटक जात होके आतन को बारिश होइला पर घुल के आपस में एकदम मिल जात, ओके कहें कि करैली माटी से बाल धोवाला का बात करें आप पूरा देह बा तौन पियर माटी से लेप करके अनहिला का बात करें, का चिकित्सा में भी अलग अलग तरह के माटी का उपयोग कइल जाला?
6: मैं एक ध्यान रखे चाहिए कि उसमें बालू कम हो, चिकनी मिट्टी हो, पूरे बदन में लगाएं तो चिपकी रहे थोड़ी देर गिर।
0: हाँ भैया, पानी और मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा के तरह की कहल जाला, डॉक्टर बिपिन मोदी से विनय कुमार भैया बतियात रहे हैं।
1: भैया देखा एक साथ चल जा पंचो जय हिंद।

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे क्रमशः भोजपुरी तथा हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के एनएक्सी भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। ए बैठकी में गोरखपुर आ आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों शामिल भई लें। ए दौरान जनप्रतिनिधि लोग एक एक कई के अपन प्रस्ताव रख लें, जे पर विभागीय अधिकारी उन्हें ओकरे वस्तु स्थिति के जानकारी दिल लें। ए मौका पर मुख्यमंत्री विभाग के कई को परियोजना के गहन समीक्षा कर लें और कार्य में तेजी ले आने के निर्देश दिल लें। बैठकी में विकास कार्यन के साथे साथे कानून व्यवस्थाओं के पहलुओं पर समन्वय बनावे रखने पर जोर दिल गई। इससे पहले आज सवेरे मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में करीब 150 लोगों की समस्या सुन लें, अप्रार्थना पत्र लेके समाधान बदे भरोसा दे लें। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री अधिकारी लोगों के निर्देशित कर लें कि उन लोगों की समस्या के संवेदनशीलता से लेत जल्दी से जल्दी समाधान सुनिश्चित करें। ए पर कौनो तरह के लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 बरिस पूरा भइले के मौका पर प्रदेश के कई जिलन में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहल हवे। मिर्जापुर जिला के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज ओइजा पहुंच के संवाददाता लोगिन से बतियावत केंद्र सरकार के कार्यन के गिनौले।
1: किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी योजनाओं ने उल्लेखनीय और प्रभावी भूमिका निभाई।
0: श्री नंदी कहले कि देश के आखिरी पार्टी में बैठल मनई के सरकार के योजना के लाभ मिल रहा है, जेकर नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बहरे आ चुकल हवे। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी आज उन्नाव में प्रेस वार्ता कई के केंद्र और प्रदेश सरकार के कई को

0: जानकारी दे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के कई जिलन में कई गो केंद्रन पर सकुशल पूरा हो गई। परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से स्वच्छता के लेके पुरहर इंतजाम कल गए रहे। परीक्षार्थियों के संभावित भीड़ के ध्यान में रखत केंद्रन वाला सज्जो जिलन में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग तैयार रहल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए परीक्षा अधिकारियों बदे आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एगो कार्यक्रम शुरू कैले हवे। एकर उद्देश्य एनटीए परीक्षा बदे पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रिया के मजबूत कैल आ ऑफलाइन पेन आ पेपर आधारित परीक्षण के सुचारू, सुरक्षित और मानक के हिसाब से संचालन सुनिश्चित कैल ह। विश्व रक्तदाता दिवस के मौका पर आज प्रदेश के सज्जो पूरब जिलन में रक्तदान शिविरन आ जागरूकता कार्यक्रमन के आयोजन कैल गए। ए मौका पर स्वैच्छिक रक्तदान करे वाले लोगन के प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित कैल गए आ ढेर से ढेर लोगन के रक्तदान करे बदे प्रेरित कैल गए। आजमगढ़ जिला के मंडलीय चिकित्सालय में आज 10 बेड के रक्तदाता कक्ष के शुरुआत कैल गए। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एनएक्सी भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने एक एक कर अपने प्रस्ताव रखे, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने उन्हें उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग के विभिन्न परियोजनाओं की गहन समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था के पहलुओं पर भी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगभग 150 लोगों की समस्याएं सुनी और प्रार्थना पत्र लेकर समाधान के लिए आश्वस्त किया। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता से लेते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज वहां पहुंचकर संवाददाताओं से बातचीत कर केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाया।
1: किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी योजनाओं ने उल्लेखनीय और प्रभावी भूमिका निभाई।
0: श्री नंदी ने कहा कि देश के अंतिम पंक्ति में बैठक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आज उन्नाव में प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बलिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने संवाददाताओं से बातचीत में देशभर में संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। अम्बेडकर नगर में प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास

0: नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार, जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध केंद्रों पर सकुशल रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से शुचिता को लेकर समुचित व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए केंद्रों वाले सभी जिलों में प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग मुस्तैद रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में रक्तदान शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। आजमगढ़ जिले के मंडलीय चिकित्सालय में आज 10 बेड के रक्तदाता कक्ष की शुरुआत की गई। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: पंचो जय जवान जय किसान। भैया हो देखा अपने पंच भाई लोग के बैठकी लगल, और भैया देखा अपन पंच भाई लोग खेती बाड़ी के कार्य में भैया लगल रहे ना। लेकिन एक चीज बा भैया कि अगर देखल जाए समय ना, तो इतना अंधाधुंध तरीके से दवा का प्रयोग जोन पेस्टिसाइड होला भैया, कीटनाशक दवा जोन प्रयोग कर रहे पंच भाई लोग, या फिर रासायनिक उर्वरक, एक का उर्वरक भैया इतना ज्यादा प्रयोग कर लेना पंच भाई लोग कि वो से जो बा अपने खेते का उर्वरता भैया धीरे धीरे खत्म,
11: उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म हो जाता
10: है। भैया देखा पहले ऐसा रहा है कि पंच भाई लोग गोबर का खाद भैया खेते में डालत रहना,
11: सही कर
10: और ओकर भैया कहे कि करम टर जाए, लेकिन गोबरे का खेप जहाँ रहे वहाँ का फसल नहीं टरता।
11: सही कर भैया।
10: तब उसे ई रहा कि गोबर के खाद जो रहा वह खाद से खेत के अपने जवन भी उर्वरा शक्ति चाहिए वो सब मिल जाता रहा।
11: भैया हरी खाद भी प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ढैंचा बो दें, आपको उलट पुलट दें, सनई ढैंचा बो का अपन सब कही दें, तो इस जो प्राकृतिक रूप से जन अपने खेते के जो अपन उर्वरा शक्ति बचावत रह
10: एकदम भैया। अगर पहले वाले व्यवस्था में पंच भाई लोग वापस ना ही जाइए और केवल ये सोचिए कि भैया खेते में केवल रासायनिक खेत उर्वरक के छिड़काव कई कई और फसल लिहल जा, तो भैया देखा कुछ दिन चल पाई, फिर आगे चली नहीं, पैदावार खत्म हो,
11: धीरे धीरे धीरे धीरे जो मट्टी की उर्वरा शक्ति वह खत्म हो जाए और अपन जो फसल बा वो अपन।
10: अब देखा ये समय अगर देखा जाए ना, तो भैया खेते में मालूम हुई डांट खूब उपजल बा,
11: हाँ सही कर,
10: लेकिन पता ही चल कि जब कटाई हो लगल तो उसमें दाना है ना ही।
11: सही कर भैया।
10: और इतना बटलो बता, इतना महीन महीन बा भैया, इतना छोट छोट दाना बा कि जौने में कुछ निकल रही वाला नहीं बा,
11: अपन लागत नहीं आता था उस हिसाब से,
10: तो एकदम हल्का रहा था वो, यहाँ ते पंच भाई लोग उनके पता भी नहीं चल पावा था कि कितना हमारा फायदा भइल कितना नुकसान।
11: यही नाते भैया हो यह समय जो बाटे न अपने सरकार की ओर से विशेष तौर पे अभियान चला के,
10: हाँ, एक से लेके 30 जून
11: खेत बचाओ अभियान जो बाटे ये चलावल जाता भैया। ये मन यो तो अपने खेती के बचावल जा और जन
10: करे खातिर पंच भाई लोग के काम करे चाहिए भैया ना, ज्ञापन मृदा कार्ड बनवा लें और खेते के माटी के जांच करवा लें, जवन खाद जरूरी होता मन दे है कि नहीं,
11: मैं जो पोषक तत्व तो कमी कमी बा वही के अपन दे,
10: वही के दे
11: अधिकता वही के अधिकता करिए तो और नुकसान हो जाता।
10: देखा पहले लोग जो बा गाय के मूत्र उत्र से भैया छिड़काव कर देता है गोबर वोबर मिला के भैया, वो हमें कीड़ा नहीं लगत रहा।
11: सही कल
10: अब पता ही चलता कि कोनो भी सब्जी लिहल जाता तो भैया डर लगाता हो कि एक एक खाई जाता तो पता चली कि नुकसान करी फायदा करी,
11: कीटनाशक का प्रयोग भइल बाटे का नुकसान हो, इस सब बात हो गई।
10: तब भैया देखा ये काम करे के बाद भैया खेतों भरना है, बचाओ अपना बचाओ, खेतों बची तो अपनों बचल जाए।
11: सही कला भैया, हाँ खेत बचाओ, किसान का अधिकार के अपन अच्छा करे, प्रदूषण के बचाओ, पर्यावरण के बचाओ जरूरी बाटे, साथे साथे जल संरक्षण के अपन कई जरूरी बाटे ताकि अपनी मिट्टी के जल धारण के क्षमता बढ़े और ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन।
10: भैया हो देखा हमारे कहले मतलब तुहार विचार ये है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ पंच भाई उनका मन मनसाइन हो जाए,
11: हाँ
10: तब पंच भाई भानु प्रताप जी के स्वर में सुने कि

0: हाँ भैया देखा, इतना बढ़िया पर्यावरण से संबंधित लोकगीत भानु प्रताप के आवाज़ में रहा है। भैया अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ ना। और देखो भैया बात भैया ना, अपने परिस्थिति के अनुसार जो बाटे धान के जो कौन कौन प्रजाति बड़ी होकर खेती कर लिया।
1: भैया कहले मतलब ये बात कि जैसन अपन माटी हो, जैसन पर वहाँ के मौसम हो, ओकरे हिसाब से कौन बिया लगावल जा,
0: सही
1: कौन
0: कहल भैया,
1: प्रजाति लगावल जा।
0: ऊंचास बा नीचास बाटे, पानी के जो ज्यादा उपलब्धता बा, पानी के कमी बा, ऐसने हिसाब से रखे माने परिस्थिति के अनुसार धान के कौन कौन प्रजाति बढ़ी, ये पर डॉक्टर सतीश कुमार तोमर जी जानकारी देते हैं, अपने किसान भाई सुने और लाभ उठावा।
2: भाइयों, हमारा खरीफ में धान एक प्रमुख फसल है और किसान को धान की फसल से बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि उसको साल भर धान से चावल खाने को चाहिए। इसकी अच्छी पैदावार होना बहुत आवश्यक है और अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान भाई सबसे पहला जो ध्यान जाता है किसान भाई का, वो जाता है कि अच्छी प्रजाति का बीज हमें मिले। अच्छी प्रजाति का चुनाव वो करना चाहते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें कि उनके खेत की स्थिति किस तरह की है और उनको आगे कौन सी फसल बोनी है। जैसे अगर कोई किसान भाई सब्जी की खेती आगे करना चाहता है धान के बाद में, तो उसको कम अवधि वाली धान की प्रजाति की बुआई करना चाहिए, या किसी के पास सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है तो असिंचित क्षेत्रों के लिए जो प्रजातियां उपयुक्त हैं उनकी खेती करनी चाहिए। तो जो कम दिन की और असिंचित क्षेत्रों में प्रजातियां अच्छी पैदावार देती हैं, तो वो किसान भाई जिनको आगे सब्जी लगानी है, अगेती मटर लगाना है या अगेती आलू करना है, उनके लिए जो प्रजातियां हैं उनको किसान भाई नोट कर लें। उसमें एक प्रजाति है शुष्क सम्राट। ये प्रजाति 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी प्रजाति है बरानी दीप। ये प्रजाति 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी भी उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। एक प्रजाति है पंत धान 12। ये प्रजाति 105 से 110 दिन लेती है और इसकी पैदावार 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं ये असिंचित क्षेत्रों के लिए कम अवधि वाली प्रजातियां हैं, इनको किसान भाई खेती कर सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारे किसान भाई, जो मध्यम अवधि की हमारी धान की प्रजातियां हैं और वो अच्छी पैदावार देती हैं, उनको भी किसान भाई देखें कि जो किसान भाई अपनी फसल को 130 से 135 दिन में धान की फसल काटना चाहते हैं, अच्छी उपज लेना चाहते हैं, तो वो मध्यम अवधि की प्रजातियों को लेकर के बुआई करें। इसमें जो सबसे पहली प्रजाति है और बहुत अच्छी पुरानी प्रजाति है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो है ये प्रजातियां जो है किसान भाई इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, एक है सरजू 52। ये प्रजाति ऐसी है जिसको आज भी किसान जो है बहुत पसंद करते हैं, जबकि बहुत पुरानी प्रजाति हो चुकी है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये प्रजाति सूखा भी बर्दाश्त कर लेती है और थोड़ा पानी भी अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको भी बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि ये अच्छी पैदावार देती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो जो है आपकी 50 से लेकर 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ये उत्पादन दे जाती है। इसका दाना थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन लंबा होता है। दूसरी एक प्रजाति है नरेंद्र 2064। ये प्रजाति 115 से 125 दिन में तैयार होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरी जो प्रजाति है वो है नरेंद्र 2065। ये प्रजाति 125 से 130 दिन में तैयार होती है और 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपनी पैदावार देती है। ये दोनों ही प्रजातियां बहुत अच्छी है, थोड़ा सा डांठ इनका जो है लंबा होता है जिसको किसान भाई कहते हैं, तो इनको किसान भाई बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सियाट्स धान 1, 2 और 4, ये प्रजातियां भी जो हमारा नैनी में है सियाट्स करके, वहां से ये निकली हैं और इनकी जो अवधि है 125 से 135 दिन है, उत्पादन क्षमता 45 से 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, दाना महीन और लंबा होता है। अब आती है जो देर से पकने वाली हमारी प्रजातियां हैं, लंबी अवधि की प्रजाति जिनको हम कहते हैं, इसमें दो प्रजातियां बहुत ही किसान पसंद करते हैं। एक है सांबा मैसूरी जो 155 दिन लेती है और 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है पैदावार देती है। इस प्रजाति में एक ही समस्या है कि इसमें जो BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, वो थोड़ा सा इसमें असर करता है, उसका किसान भाई ध्यान रखेंगे तो इससे जो प्रजाति से आप उत्पादन क्षमता अच्छी ले सकते हैं। दूसरा है सियाट्स धान 3। ये 140 दिन में तैयार होती है और 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है, लेकिन इसका दाना महीन होता है इसलिए किसान इसको पसंद करते हैं। चौथी प्रजाति है MTU 7029। ये ऐसी प्रजाति है जिसको बोनी मैसूरी भी कहते हैं, स्वर्णा मैसूरी भी कहते हैं और ये 160 दिन लेती है, 60 से 65 कुंटल इसकी पैदावार होती है। तो ये अधिक पैदावार देने वाली हमारी जो प्रजातियां हैं इनको किसान भाई ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता क्षेत्र के अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव होता है, तो जलभराव में किसान भाइयों ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेतों में कितना पानी रुकता है। अगर कम पानी रुकता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक अगर आपके पानी रुकता है, खेत में लगा रहता है, तो वहां पर जो है आप MTU 7029 जिसको हम स्वर्णा मैसूरी कहते हैं उसको भी ले सकते हैं, और एक वैरायटी NDR 8002 उसको भी ले सकते हैं। ये जो प्रजातियां हैं ये 30 से 50 सेंटीमीटर तक जो है आप लगा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर पानी आता है आपके खेत में तो एक प्रजाति आती है जल लहरी, ये 150 दिन में तैयार होती है, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। फिर एक प्रजाति आती है जलमग्न, ये प्रजाति 150 से 200 दिन लेती है और उत्पादन क्षमता इसकी 45 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे आपके खेत का पानी का लेवल बढ़ता है वो ऐसे ऐसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। एकदम से पानी ना आए, अगर धीरे धीरे खेत में पानी का लेवल बढ़ता है तो ये प्रजाति वहां पर और जब खत्म हो जाती है ये प्रजाति सर्वाइव कर जाती है। और इसी में एक प्रजाति आती है जलप्रिया, 150 से 160 दिन लेती है, 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जो है पैदावार होती है। तो जहां पर पानी 1 मीटर 1.5 मीटर तक पानी आता है वहां पर ये जलप्रिया और जलमग्न को आप किसान भाई खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है सभी किसान भाइयों को कि आप जो है इसको अगर जुलाई में लगाने जाएंगे तो आपको पैदावार उसकी नहीं मिलेगी। आपको ये जितनी भी जल भराव वाली जहां 1 मीटर 1.5 मीटर पानी आता है इनको अगेती लगाना पड़ेगा। अगेती लगाने का मतलब है कि आप जो है इसको मई में अवश्य लगा दे, तब ये आपको जो है पानी धीरे धीरे बढ़ेगा कि हमारे यहाँ मानसून आता है जून लास्ट में, तो ये उस लायक हो जाए कि आपको जो है ये वहां पानी में डूबे नहीं। अब वो प्रजातियां मैं किसान भाइयों बता रहा हूँ जो प्रजातियां अगर आपके खेत में अचानक से पानी आ गया और 10-15 दिन आपके खेत में पानी भरा भी रहा, तो ऐसे खेतों के लिए जो प्रजाति है वो है सांबा सबवन। एक प्रजाति है सांबा सबवन, जो हमारी सांबा मैसूरी है उसी में एक जीन डाला गया है सबवन करके, और इससे क्या होता है कि इसमें 10 से 15 दिन तक अगर ये कंप्लीट पानी में डूबी भी रहे तब भी ये प्रजाति जो है आपको 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे जाएगी। दूसरी है स्वर्णा सबवन, ये प्रजाति थोड़ा ज्यादा समय लेती है लेकिन ये भी अगर 15 दिन तक पानी में डूबी रहेगी और उसके बाद अगर पानी उसका निकलता है तो ये प्रजाति भी आपको अच्छी पैदावार दे जाती है। नरेंद्र नारायणी एक प्रजाति है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। नरेंद्र जलपुष्प एक प्रजाति है और नरेंद्र मयंक, ये प्रजातियां आप जल भराव जहां पर सडन बाढ़ आई और पानी निकल गया जिसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं वहां पर किसान भाई इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। अब जो सेगमेंट आता है किसान भाइयों धान की वैरायटी का वो आता है बासमती का। वैसे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर बासमती का GI नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ किसान मैं देखता हूँ अपने खाने के लिए या शौक में किसान भाई बासमती की खेती करते हैं। इसमें है पूसा बासमती 1 और इसी में संशोधित किया गया है एक संशोधित बासमती 1 या 1। इसके अलावा जो प्रजाति है उसमें बासमती 217 है, बासमती 317 है, त्रावड़ी बासमती है, ये पुरानी प्रजातियां हैं। लेकिन इनके बाद जो प्रजातियां आई हैं उनको भी किसान भाई देखें कि पूसा बासमती 1121 ये प्रजाति बहुत अच्छी पैदावार देने वाली है, 130 दिन में ये करीब करीब तैयार हो जाती है। और अगर आप देखें अगर हम मंडी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये धान बिकता है मंडी में। इसके बाद जो प्रजाति आई है वो आई है पूसा बासमती 1509, ये प्रजाति कम अवधि की है और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। बस इसमें एक थोड़ा सा नुक्स है कि ये जब आप चावल बनवाने जाते हैं तो इसका चावल जो है थोड़ा सा टूटता ज्यादा है, इसलिए इसको अगर रबर के रोलर हो तभी किसान भाई इसको खेती करें। इसके अलावा बल्लभ बासमती 22, पूसा बासमती 6, मालवीय बासमती धान 10-9 ये भी अच्छी प्रजाति है, पूसा बासमती 17-28, पूसा बासमती 16-37, पूसा बासमती 17-18, पूसा बासमती 16-92 ये प्रजाति जो है किसान भाई ले सकते हैं बासमती की। इसी में एक है पंजाब बासमती 5, हरियाणा बासमती 2, ये इतनी बासमती की प्रजातियां हैं और इनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। तो जो भी किसान भाई इनकी खेती करना चाहते हैं इनमें से चुनाव करके आप बासमती धान की प्रजाति ले सकते हैं। अब वो सेगमेंट आता है जहां पर हमारे किसान भाई के यहाँ अगर ऊसर का क्षेत्र है तो वहाँ कौन सी प्रजाति किसान भाई लें? तो ऊसर के लिए जो अच्छी प्रजाति है, एक तो आपकी आती है ऊसर धान वन करके एक प्रजाति आती है, ऊसर धान एक, और जो अब इम्प्रूव्ड बहुत अच्छी प्रजातियाँ आ गई है CSR 36, CSR 43, CSR 13, CSR 56, ये प्रजातियाँ उसरीली भूमियों में धान की अच्छी खेती करने के लिए बड़ी उपयुक्त है। इनको लेकर के किसान भाई जहाँ भी आपके खेत में ऊसर है वहाँ पर इनको लगा सकते हैं। अब आता है कई बार किसान भाई जो है आज बहुत अच्छी पैदावार कम समय में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए संकर धान की जो प्रजातियां हैं वो ग्रो करनी चाहिए किसान भाई को। और संकर धान में जो उन्नत प्रजातियां हैं जो अभी हमारे क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी पैदावार दे रही हैं, उसमें है प्रो एग्रो 6444, प्रो एग्रो 6201, PHB 71, ये वेराइटी बहुत अच्छी वेराइटी है। अगर कहीं इसका सीड मिलता है, उत्पादन क्षमता इसकी 75 क्विंटल तक भी ये वेराइटी पैदावार दे देती है, इसको आप ले सकते हैं। पूसा RS 10, ये भी एक वेराइटी बहुत अच्छी है, इसको किसान भाई ले सकते हैं। KRS 2, ये वेराइटी भी जो है बहुत अच्छी है हाइब्रिड में। एक प्रजाति हमारे पूरी उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ जो है इस समय चल रही है, और अभी जो गोरखपुर में हाईएस्ट प्रोडक्शन मिला है वो इस वेराइटी को हाइब्रिड लगाया गया था, और बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जो पैदावार आई वो 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हार्वेस्ट की गई थी। स्वाना 7501, ये वेराइटी संकर धान की है और लगभग 135 दिन में ये तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार पिछले साल जो क्रॉप कटिंग हुई थी उसमें ये हाईएस्ट का अवार्ड जो है इस किसान को जिसने ये वेराइटी लगाया था उसको मिला है। तो ये धान की जो प्रजातियां हैं इनमें से कोई भी प्रजाति लेकर के लगा सकते हैं। अपनी परिस्थिति का जरूर ध्यान रखें, किस तरह का हमारा खेत है, हमारे पास सिंचाई के क्या साधन है, कितने दिन की फसल हमको लेना है, आगे कौन सी फसल, गेहूं बोना है, चना बोना है, मसूर बोना है या सब्जी लगाना है, उसके हिसाब से आप प्रजाति का चुनाव करें, अवधि के हिसाब से, उत्पादन क्षमता के हिसाब से, तो आपका जो धान की पैदावार है वो बहुत अच्छी जो है आपको प्राप्त होगी। इसमें एक दो चीजें मैं और किसान भाई को बताना चाहता हूं कि एक तो जब भी आप कोई धान की बुआई करने जाते हैं तो उसका अपने घर पर बीज की उत्पादन क्षमता का टेस्ट जरूर करें। अगर आपने कहीं से सर्टिफाइड बीज नहीं लिया है और आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप उसको जो है बीज को उसमें से 100 बीज लेकर के आप उसका जमाव करके देख लीजिए कितने बीज उसमें से जम रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने बीज की दर को जो है निर्धारित करें कि हमको पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो भी बीज डालना है। एक छोटा सा आसान उपाय और है कि आप जो है एक नमक का घोल बनाएं और नमक का घोल ऐसा बनाएं कि आपका अंडा जो है उसमें तैरता रहे, यानी कि इतने परसेंट का घोल बनाएं, कम से कम 20% का घोल वो बनता है, अंडा उसमें तैरने लगे डाल के देख लें कच्चा अंडा, और उसमें फिर आप अपने बीज को डाल दें। जो बीज नीचे बैठ जाएं उनको आप अलग कर लीजिए, ऊपर वाले बीज को फेंक दीजिए, और फिर 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह धुल के ताकि नमक उसमें से निकल जाए, फिर जो है आप उस बीज का नर्सरी डालने के लिए या सीधी बुआई के लिए कुछ भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें, धान की अच्छी पैदावार आप लोग प्राप्त करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ भैया, देखा कितना निमन जानकारी मिलल परिस्थिति के अनुसार धान की प्रजातियां विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार तोमर जी से दिहल जा धन्यवाद। भैया हो लगले हाथे सुनल जाएगो गीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
6: हो सुन सजन

0: भैया देखो, भानु प्रताप के आवाज में इतना बढ़िया अपन ये लोकगीत सुनल के लकी साहब मेलन और ई के साथ अपने कार्यक्रम समय पूरा होता चले के
1: पंचों
0: पंचों
1: जय
0: जय
1: जवान
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो, तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
8: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
7: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
8: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
6: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
7: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
10: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
9: For details, log on to www.ddindia.com।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राकेश उपाध्याय व साथी।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे राकेश उपाध्याय। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश हमार। देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी कहानी मजदूरनी। कहानीकार हैं रामजी कुशवाहा।
1: शाखा मजदूरनी जे जे गांव में रहेला वो अधिकतर गरीब मेहनती और ईमानदार होला। ए समय गांव में रहे वाला लोगन में आधा से थोड़े कम ऐसा लोग रहेला जो भीमहीन होला। बहुतेरे तो ऐसा लोग मिली जेकरे घर में बनाए भर के जमीन नहीं खे। पैमाल होखले से ई लोग अपने लोग लैकन का पढ़ा लिखा नहीं पावला। अनपढ़ भैले से ये लोग सरकारी सुविधा का भी लाभ उठा नहीं पावला। गांव में जवन दलाल लोग होला सरकारी सुविधा दिले के नाम पर उगाही करना। एगो आदमी रुपया पैसा देत देत थक गईल तो कहलस ए सोकन तू अपन पोकर निहारा तोरे दूध दही से अघा भैली। हर जगह त बिजली आवता त गऊ में भी आवत बा। राम जतन एगो गरीब आदमी रहना इनका सारा परिवार मजदूरी करे। राम जतन का परिवार में शिक्षा ना ही रहे पर उनका मौगी होशियार रहे। कुछ औरतन का गोल बना ला अवर रोपनी सोनी कटिया पिटिया कर। आषाढ़ का महीना बेहन तैयार हो गयल रहल। राम जतन का मेहरारू का गोल भी तैयार हो गयल रहे। महाबलों से अपने खेत का रोपनी करे के कहलना तो तैयार हो गयी। फला दिन का रोपनी हुई खेत सड़क का किनारे रहा। खेत में मुन्नी के गोल पौधा उखाड़ के रोपनी करत रहे। मुन्नी के उम्र यह 35-40 के रहे। ओकरे गोल में जवन जवन औरत साड़ी पहनले रहली कछाड़ मार लेले रहली जवन लैकनी सलवार समीज पहनले रहली खींच का ऊपर चढ़ा लेले रहली दुपट्टा करियाई से गला तक बाद ले रहली जितना छिछोर जा मुन्नी के ओर जरूर निहारा। एगो छिछोर कहलर बदल जबाना गोरिया पहना रंगदार चुनरी। मुन्नी हमेशा रंगदार साड़ी पहना और बनठन के रहा। मुन्नी कहली एने तो तनो मनो पेटो और छत्ते बिना घरों नंगा बा।

के भौजाई बुझत बड़ा। मुनि ब्रह्मण मुनि के तेवर देख के वहां से भाग गए। मुनि रोपनी कर और जहाँ रोपनी कर वहाँ अपन बकरियों ले ले जा। जहाँ प्रतिप रास रहे या नहर के पटरी पर बकरिया खूटी गाड़ के डोर द। एक साथे उनके दोनों काम हो जा। मुनि मिलन स्नार रहली और उनका बोली कोरी जैसन मीठ रहे। एक बार हमारे घरे घूमत घामत आके हमारे मलिकाई से बतियावे लगली। मलिकाई ने कहली हो जब तुहन लोगन रोपरी करेला तो ओरजा कुछ लोग खड़ा रहेला। मुन्नी कहली हमन तो गरीब बानी लाज भी सब कुछ जर गई बा। हमन को केहू अपन बहिन बेटी समझ तो खड़ा रही। रोपनी समाप्त हो गई रहे। मुन्नी का काम बकरी चरावल रहे। वो चटक रंग के साड़ी पहन और झाड़ बना के बड़का मोबाइल लेके जरूर जा। केहू के काल सुना पर केहू के काल ना ही कह पाऊ। मोबाइल से गीत सुना और अपने में मस्त रहा। एक दिन एगो छोकरा जात रहे वो मुन्नी से कहलस का हो तू तो मोबाइल में मस्त रहलू। मुन्नी तन कसली ए बाबू तुहार बात बुझत बानी। राग निक लागे होरी के साग निक लागे तोरी के और गोरी निक लागे चोरी के। फिर कहली हे बाबू जौन बत्तिया हमरा पर लागू होत बा वो तुहरे परनियों पर लागू हुई। हम चाहे सरेहे में रही चाहे घरे में दूसरे का मेहरारू के जो घूरे ला ओकर आंख फूट जा। शाहित्रा जाने ली शाहित्रा वाले ही झरगहवन के बाती में फंसे ली। समय सरके लागल रोपनी कैले के कुछ दिन बाद घास उगी आई। एहू समय मुन्नी के गोल काम करत रहे। जेके खेत के रोपन सोहनी करावे के होके वो मुन्नी के लोग जा अमानी पर या ठीका पर जे जैसे कहे मुन्नी सोहनी करा दा। मुन्नी और मुन्नी के मरद बड़ा होशियार रहना। वो लोग एक गैयो पल्ले रहना। मुन्नी बकरी डोर दा। इनका गैया के छाटी भूसा और पुअरा के जरूरत ना ही पड़े। वो घसिये खा के सोच हो जा। गैया के दुधवा अपने काम में ले आवा और जौन बच जा बेच दा। मजदूरी के साथे साथे दुधवा से भी पैसा मिले लगा। ये लोग खैले में कोताही ना करा। ये लोग केहू से डरा नहीं। ये लोग कहे हमन का आपन कमाई खाई ले ते डराई काहे के। जे के चाप देव जा वो धुआं फेंक दे। वो तंच कहना हो भौजी का हाल बा। मुन्नी कहली राह चलत के तारन टूटे साजन छूटे छूटे यार कैसे छूटे। बाबू समझला कि हम का कहत बानी। मुन्नी कहली हमन मरद मेहरारू में जौन प्यार बा उहे यारी है। जानलो बाबू तू अपना रास्ता नापा नाही तो तोरे कुल की पगड़ी नपा जाए। रोपनी सोहनी बीत गई। कुछ दिन बाद में मुन्नी अपन गाय बकरी देखे लगली और रामजतन शहर जाके कुछ काम कर। कटिया शुरू हो गए रहे। मुन्नी के गोल कटिया करे के तैयार रहे। मशीनी जुग में भी ये लोग धान गेहूं का कटिया में मजदूरी अनाज के रूप में ल। एक बीघा धान काटा तो 5 मन धान ल और एक बीघा गेहूं काटा तो 2.5 मन गेहूं ल। ये लोग अनाज इतना जुटा ले कि साल भर खैबो करे और बेच भी दा। ये लोग कहे जितना आलसी बहाना 5 किलो सरकारी अनाज खातिन मरे ल। एक जाने का तुरंते कटिया भय और दवा गए। वो कहला अनाज दहली छाती फट गई। मुन्नी कहली हे बाबू गुलछरो उड़ेब और बचतो करब दोनों ना ही हुई। लोग कहला हाउ काम चोर है हाउ काम चोर है पर हमन के केहू ना ही कहला। सब धान पाइस पसेरी नहीं चलेला। फिर वो कहला तनी काम और ढेर काम से का भइल सबके मजदूरी बराबर कर दहल जा। मुन्नी कहली यहाँ धन दूसरा राजा नहीं जेकरे राज में टका सेर साग टका सेर खाजा बिकेला। समय के साथ साथ मुन्नी और रामजतन का लड़का थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर सियान हो गए ना। जब इनके दोनों लड़का 12वीं पास हो गए ना तबले इन्हन का उम्र भी 18 से अधिक हो गए। मुन्नी कहली हे बाबू तुहन लोग आपन आपन आधार कार्ड बनवा लो तो हम बतावत बनी। मुन्नी कहली हे बाबू तुहन लोग जमाना देखा ताड़ा नौकरी चाकरी के का हाल बा अपने मार्कशीट और आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवा ला
हम

0: का तन मेहनत मजदूरी बढ़ा दिया जाए और जितना घटा था उतना कर्ज लेके वीजा लेके विदेश चल जा लोगन। उनका दोनों लड़का माई के बात सुन के सोचना ये लोग सही कहत बा, लड़का लोग पासपोर्ट बनवा लेना और वीजा लेके विदेश चल गए ना। पहले ये लोग कर चुकावल, अपने माई बाप पर ये लोगन के विश्वास रहल, कमा के ये लोगन के लगे रुपया भेजे लगना। ये लोगन का माई बाप से ये लोगन से मोबाइल से राय लेके ईटा गिरवावे लगना। कुछ के छाती पर सांप लौट गए। कुछ लोग मुन्नी से कहना काये मुन्नी अब रात दिन कमाई हो ताका। मुन्नी जवाब देली पहले और अब एक जने कहना आवास खातिर अप्लाई कर दो। मुन्नी कहली जी आवास ले ठाढ़े जर जा और जी आवास दे ऊपर पड़े।
1: रामजी कुशवाहा से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कहानी मजदूर ने। इसी के साथ देश हमार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंजाबी लोकगीत।

विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
4: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
7: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
9: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
8: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
9: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
8: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
9: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
11: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
12: हमारी जनगणना हमारा विकास।
13: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए

www.prasarbharatiarchives.co.in याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म थी अजब गजब लव। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें।
1: पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: स्वागत है साथियों आप सभी का ऑल इंडिया रेडियो के लोकप्रिय प्रोग्राम कैंपस की बातें में। और आज हम बातचीत करेंगे मैनेजमेंट कोर्स और उसके भविष्य के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गीड़ा गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैनेजमेंट से जुड़ा कोर्स MBA और BBA है क्या, और इसमें करियर की कितनी अपार संभावनाएं हैं?
3: देखिए, MBA या BBA के बाद कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा, यह आपकी स्पेशलाइजेशन, स्किल्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और रुचि पर निर्भर करता है। इसके लोकप्रिय जॉब रोल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट। और इसके प्रमुख सेक्टर्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, FMCG, ई कॉमर्स, कंसल्टिंग, स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। MBA के बाद मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में बेहतर सैलरी और ग्रोथ मिलती है। हमारे यहाँ MBA के स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन और इंटरनेशनल बिजनेस में है। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस शुरू करने में है तो BBA MBA इंटर्नशिप के लिए भी मजबूत बेस देता है।
2: सर, हमने MBA और BBA कोर्स की चर्चा की, कहाँ कहाँ अच्छे सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके KIPM कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज छात्रों के लिए मौजूद हैं और क्या कुछ नया हो रहा है।
3: KIPM कॉलेज में मैनेजमेंट के BBA MBA, कंप्यूटर एप्लीकेशन के BCA MCA, BTech में CS AIML, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड EC ब्रांचेज हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक्स फार्मेसी में बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कोर्स चलाए जाते हैं। और इसके साथ ही छात्रों के लिए नए नए इनोवेशन ट्रेनिंग और स्टार्टअप की दृष्टि से पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर भी मौजूद है, जो KIPM इनोवेटर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है।
2: सर, आपके मैनेजमेंट कॉलेज में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स MCA और BCA की चर्चा की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कोर्स क्या है और इसमें करियर की कितनी संभावनाएं हैं।
3: BCA और MCA के बाद IT, सॉफ्टवेयर, डाटा, साइबर सिक्योरिटी और टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आज के समय में स्किल डेवलपर्स, एनालिस्ट और क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। BCA के बाद तमाम तरह के करियर अवसर हैं, जिसमें लोकप्रिय जॉब रोल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। MCA के बाद आपको एडवांस टेक्नोलॉजिकल रोल्स और बेहतर सैलरी पैकेज मिलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एंड AI में, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइबर सिक्योरिटी में, मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग में आदि शामिल है।
2: सर, आपने इन तमाम कोर्सेज का जिक्र किया और इन कोर्सेज से जुड़े भविष्य की स्कोप पर भी चर्चा की। इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि इन कोर्सेज को करने के बाद आपके KIPM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में प्लेसमेंट की कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे KIPM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काम करता है, जो कैंपस इंटरव्यू, इंटर्नशिप और करियर गाइडेंस प्रदान करता है। हमारे कॉलेज के छात्रों को विप्रो, इंफोसिस, HCL, TCS, एसेंचर, महिंद्रा, SBI, माइंडट्री और बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियों में अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है।
2: सर, अभी आपने KIPM कॉलेज में स्थित इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर की बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है, ये छात्रों के स्किल्स और डेवलपमेंट में कैसे सहायता करता है और मैनेजमेंट के छात्रों को इससे कितना लाभ मिलता है?
3: देखिए, हमारे यहाँ KIPM इनोवेटर फाउंडेशन इनोवेशन सेल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स की टेक्निकल, एंटरप्रेन्योरियल और प्रैक्टिकल स्किल्स को विकसित करना। यह केवल क्लासरूम लर्निंग तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड इनोवेशन, क्रिएटिविटी, स्टार्टअप कल्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट्स को नए आइडियाज पे काम करने, प्रोटोटाइप्स बनाने और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनकरेज किया जाता है। इससे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम स्किल्स बेहतर होती है। KIPM पॉलिसी के अनुसार स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप आइडियाज को एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा KIPM नियमित रूप से वर्कशॉप, सेमिनार्स और एक्सपर्ट सेशन का छात्रों के उचित मार्गदर्शन के लिए आयोजन करता रहता है और इसी ट्रेनिंग की देन है कि हमारे कॉलेज के कुछ मेधावी स्टूडेंट्स को माननीय राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया है।
2: शुक्रिया सर इतनी बेहतरीन चर्चा हमारे साथ करने के लिए,
3: धन्यवाद आपका।
2: तो साथियों, अगर आप भी KIPM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गीडा गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीडा गोरखपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी वृद्धाश्रम। कहानीकार हैं जयशंकर मिश्र।
4: रंजना काफी दिनों से बीमार थी, आज मर गई। आश्रम के सभी लोग स्तब्ध थे। मैंने पहली बार आश्रम में रहने वाली एक औरत को मरते हुए देखा, क्योंकि मुझे आश्रम में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक महीने से रंजना मेरे काफी निकट आ गई थी। यहाँ की हर औरतों की आंखों में दर्द तैरता था, लेकिन रंजना की आंखें जैसे दर्द ही उगलती थी। रंजना को दो बेटे थे, दोनों को वह बहुत बार सूचित कर चुकी थी, परंतु उससे मिलने उसका कोई बेटा नहीं आया। एक दिन उसने भीगे कंठ से मुझसे कहा, देख लेना सुमन, मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे मुझे आग देने भी नहीं आएंगे। आश्रम के संचालकों ने रंजना को मरने की खबर उसके दोनों बेटों को दे दी थी, परंतु कोई बेटा नहीं आया। मैं भीतर तक कांप उठी थी, क्योंकि सामने रंजना की लाश पड़ी थी। अब कितना इंतजार करें, चलो श्मशान चलते हैं। आश्रम के कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे। अब इनके बेटों की प्रतीक्षा करना बेकार है, चलो अर्थी उठाते हैं। थोड़ी ही देर में लोग श्मशान की तरफ चल दिए। मुझे लगा कि रंजना की जगह मैं हूं। सब मेरे बेटे प्रकाश के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह नहीं आया। मैं लेखिका थी, मेरे मन मस्तिष्क में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं सोचने लगी, माता पिता बिना स्वार्थ के अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम सोपान है। वृद्ध माता पिता जब घर में बैठकर आराम कर सकते हैं, लेकिन आजकल अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को घर पर नहीं रखना चाहते। उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे प्रकाश के नहीं आने पर लोग मुझे अपने

अरे ये बुढ़िया तो पागल हो गई। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं अपने बालों को खींचती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी और अचेत हो गई। सूर्योदय के साथ सामान्य दिनचर्या की शुरुआत हो गई। एक क्षण में ऐसा कुछ घट जाता है जिससे किसी व्यक्ति की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। कल की वेदना और संतरास की जाल से मैं मुक्त नहीं हो पाई थी। जिंदगी भी न जाने कितनी लंबी होती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। न जाने कितने प्रसंग दर्द की तहों में बंद हैं। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी एक दर्द की तह को खोलूं, पर मेरे चाहने और न चाहने से क्या होता है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हूं तो सभी पिछली दर्द की तहें एक एक करके खुलना चाहती हैं। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। कभी कभी अपना चेहरा आईने में देखती हूं तो मुझे स्वयं पर तरस आता है। मैंने कहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज कहां पहुंच गई। बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई। दो बूढ़े पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, एक समय था जब सभी लोग धूप से बचने के लिए मेरे ही छाया में आते थे। उस समय मेरी छाया घनी थी, मैं फल भी खूब देता था, लोग लकड़ियां और पत्ते भी ले जाते थे। दूसरे पेड़ ने कहा, जो तुमने किया वही हम सभी लोग करते थे, लेकिन अब न तो हमारे पास घनी छाया है, न पत्तियां हैं और न फल, इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता है। अगर हम मानवीय जीवन पर दृष्टिपात करें तो यह कहानी उन वृद्धों की सच्ची दास्तां बयान करती है जो अपने जीवन के संध्याकाल में वृद्धाश्रम की शरण में हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से असर होकर अपनी संतानों से दूर एकाकी जीवन जी रहे हैं। मैं आश्रम में बैठी हूँ, सभी औरतें सो गई हैं, सबकी आंखों में निरवता और सूनापन कैद है। न जाने कितने नींद कैसे आ जाती है। शायद ये अपने सूनेपन, एकाकीपन और निरवता को अपनी नियत समझकर खामोश बैठ गई हैं। लेकिन मैं यहाँ नई आई हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरा इकलौता बेटा प्रकाश यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर गया। प्रकाश जब मुझे आश्रम में छोड़ने आया था तब मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा था। मुझे यहाँ छोड़ने का जरा भी दुख उसके चेहरे पर नहीं झलक रहा था, बल्कि एक निश्चिंतता का भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। ये चेहरा भी मन के सभी भाव खोल देता है। माँ तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो, मेरी पत्नी किसी तरह आपके पास नहीं रहना चाहती। मैंने उसे समझाया, लेकिन वह रहने दे। मैंने बीच में ही प्रकाश की बात काट दी। क्या करती उसकी बात सुनकर, मुझे आश्रम में आना था, मैं आ गई, शायद यही मेरा अंतिम पड़ाव है। मैंने कहा, तुम मुझसे मिलने आया करेगा ना प्रकाश। मेरा प्रश्न सुनकर प्रकाश एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने साफ अनुभव किया कि वह हिचक रहा था, लेकिन उसने कहा, आऊंगा माँ, तुम चिंता मत कर। लगभग 3 महीने बीत गए मुझे इस आश्रम में आए हुए, परंतु वह मुझसे मिलने कभी नहीं आया। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की से सड़क देखती रहती हूँ। न जाने कितने चेहरे मेरे इर्द गिर्द मुड़ाते रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें जिस चेहरे को देखना चाहती हैं वह चेहरा इन तमाम चेहरों में कहीं नजर नहीं आता। मेरी आंखें सड़क की तरफ टकटकी लगाए रहती हैं, लेकिन कहीं प्रकाश नजर नहीं आता। वृद्धाश्रम में आश्रय, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था रहती है। जिनकी अपनी संतानें नहीं होती उनकी तो वृद्धाश्रम में आने की मजबूरी होती है, और जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं उनको भी वृद्धाश्रम के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए तो वृद्धाश्रम वरदान है, उन लोगों के लिए अंतिम आशा की किरण और पड़ाव है। आज इतनी रात गए

0: मुझे अपना बचपन याद आ गया। कहते हैं बचपन बड़ा सुंदर होता है, हजारों चिंताओं से मुक्त, खेल खिलौनों में मस्त रहता है जीवन। परंतु मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं था। मेरे हिस्से में था तो स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद घर गृहस्थी का भारी बोझ। जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी, तो मन इंद्रधनुषी सपने बुनने लगा, यथार्थ के धरातल से पैर उठकर आसमान की ओर भागने लगे। वह पल भी आया जब मेरे सपनों को साकार होने की बारी आई। दुल्हन बनकर मैं ससुराल गई, वहां जाने पर मेरे सपने टूट गए। जब मेरे पति ने पहली ही रात में बता दिया कि मैं दूसरी औरत से प्यार करता हूँ, मैंने तो अपनी माँ बाप की मर्जी रखने के लिए तुमसे शादी की है। जब तक सास ससुर जिंदा थे, बहू बहू कहकर प्यार दिखाते थे, मेरे पति भी दिखावटी प्रेम करते थे। सास ससुर की मृत्यु के बाद मेरे पति अपनी दूसरी पत्नी को घर पर लाने लगे। तब तक मेरा लड़का प्रकाश 1 वर्ष का हो गया था। मेरा पति तो मेरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए यह डर मुझे हमेशा लगा रहता था। मेरे पति अक्सर उस स्त्री को लेकर घर पर आते, मुझसे खाना बनवाते और आवभगत करवाते। अपने दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप मैं सब काम करती थी। आज मैं सोचती हूँ कि किसके लिए मैंने सब कुछ सहा, इसलिए कि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ देगा। घटते जीवन मूल्यों से वृद्धाश्रमों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वृद्धाश्रम बनाने के पीछे बढ़ता शहरीकरण और आधुनिक जीवन पद्धति है। आजीविका कमाने के चक्कर में देश विदेश गए बच्चे अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होती जा रही है। संयुक्त परिवारों का विघटन और एकल परिवारों का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। हमारी मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं। जेनरेशन गैप काफी बढ़ गया है। मैं घर का सारा काम करती थी, प्रकाश के बच्चों को संभालती थी, तब प्रकाश और उसकी पत्नी माँ माँ करते रहते थे। लेकिन मेरे शरीर की शक्ति चुक गई तो सबके लिए मैं बोझ बन गई। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। उसने मेरी मानसिक वेदना का अनुभव नहीं किया, मेरे मन की गहराइयों में मेरे बेटे ने नहीं देखा। मेरे साथ उसकी पत्नी बदसलूकी करती थी, तब वह दूर खड़ा होकर तमाशा देखता। मैं सोचती कि पगले, किससे तू दूर भाग रहा है, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। पति तो मेरा कभी नहीं हो सका, परंतु प्रकाश तो मेरा खून है। उसे मैंने अपने खून से पाला है, वह तो मेरा बेटा है, मेरा अपना है। वह क्यों आश्रम में छोड़कर चला गया? उसकी पत्नी से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, घर के सभी काम काज करती थी। आज मैं अशक्त हो गई तो मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार होने लगा। जो हाथ तुमको सहारा देते थे और जब उन हाथों को सहारे की जरूरत पड़ी तो तुमने अपना हाथ खींच लिया। बेटा, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होते हैं, उनको निभाना चाहिए। मेरे मन में उद्वेग बढ़ने लगा, मन के अंदर मुक्ति की चाह प्रबल होने लगी, मुझे अपने से भी नफरत होने लगी। कहा जाता है ना, जब दुर्दिन आता है तो अपना खून भी साथ नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे खून ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अब तो वृद्धाश्रम ही मेरा पड़ाव है, यहीं जीना है और यहीं मरना है।
1: जयशंकर मिश्रा से अभी आप सुन रहे थे कहानी वृद्धाश्रम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित रेडियो रिपोर्ट, वाचन एवं संकलन शफकत अली खान का है।
2: रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं शफकत अली खान। श्रोताओं, आज 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर गोरखपुर नगर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय गोरखपुर के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर प्रशांत अस्थाना ने बताया कि
3: देखिए आज विश्व रक्तदान दिवस है और इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में और राष्ट्र में हमारे जगह जगह पर कैंप्स लगा करके लोग रक्तदान कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी रक्तदान किया जाता है और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा ये दान है जो जिसको कहते हैं कि रक्तदान महादान। देखिए विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वालों को धन्यवाद देना होता है। यह जो दिन है ये नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर आधारित है जिन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज की थी। रक्तदान करने वाले को किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं आती यदि वह स्वस्थ है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है और वो किसी बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। सिर्फ 15 से 20 मिनट रक्तदान करने के बाद उसको आराम करने की सलाह दी जाती है, वो भी हमारी निगरानी में, ताकि जो उस समय जो भी रक्त निकला है उसके कारण उसको कहीं थकान ना लगे। 15 से 20 मिनट बाद वो अपने नियमित कार्य पर जा सकता है।
2: अच्छा ये कितना इम्पॉर्टेंट है खून देना, डोनेट करना, क्या किसी इंसान की जान ही बचाई जा सकती है इससे?
3: लाखों करोड़ों लोगों की जान रक्त के कारण ही बचाई जाती है क्योंकि रक्त हमारे शरीर में 24 घंटे हृदय पंप करता है और शरीर में इसकी आवश्यकता 24 घंटे जिंदगी में रहता है। तो आप समझिए कि किसी तरीके के एक्सीडेंट में या इवन सीजेरियन ऑपरेशंस में या किसी सर्जरी में या किसी भी तरीके की जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है वहाँ पे बॉडी का जो सिस्टम होता है वो गंभीर रूप से जो बीमार हैं जो किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल केसेस में वहाँ पे रक्त चढ़ा करके ही जो है उसकी जान बचाई जा सकती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक यूनिट ब्लड रक्तदान करते हैं उससे चार पार्ट्स बनते हैं जिसमें से एक PRBC होता है और उसके बाद आपका प्लेटलेट्स होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो उससे प्लाज्मा होता है। इनका भी उपयोग जो है हम अलग अलग जगहों पर करते हैं, जैसे डेंगू इत्यादि में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है उसमें देते हैं, कहीं पर प्लाज्मा की जरूरत होती है बहुत सीरियस मरीज में, ICU के पेशेंट्स में, कहीं कहीं पर PRBC की जरूरत होती है, तो उसी आधार पर जैसा डॉक्टर चिकित्सक कहते हैं वैसा किया जाता है।
2: जी मालिक किसी हम रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे है, कोई एक्सीडेंट कर गया है कोई इंसान और ब्लीडिंग हो रही, खून बह रहा, तो इंसानियत के नाते हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं? इसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा कानूनी दांव पेच का मामला होता है?
3: नहीं, कुछ वर्षों तक तो ऐसा था कि लोग डरते थे, लेकिन आज के समय में सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है सभी को कि किसी भी तरीके के रास्ते के एक्सीडेंट को लाने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी। इवन सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक सम्मान राशि भी तय कर रखी है।
2: जी जी जी अच्छा, और जो ब्लड बैंक जो ब्लड डोनेट करता है, आप लोग क्या क्या उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं?
3: देखिए सबसे पहले तो जब भी कोई रक्तदान करने आता है तो हम उसके सारे वाइटल्स को देखते हैं, अर्थात उसके BP को देखते हैं, पल्स को देखते हैं, सांस की दर को देखते हैं और उसका एक जनरल चेकअप करते हैं कि वो स्वस्थ है कि नहीं। इसके पश्चात उसके हीमोग्लोबिन को भी देखा जाता है टेस्टिंग के द्वारा, जो हमारे लैब में हमेशा 24/7 लैब टेक्नीशियन रहते हैं, कि वो उसका लेवल 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन के आसपास है कि नहीं है। अगर उससे कम होता है तो उसे कहा जाता है नहीं अभी थोड़ा नहीं, थोड़ा और आपका हीमोग्लोबिन बेटर हो जाए। अदरवाइज अगर उसकी स्वस्थता को जाँचने के पश्चात आती है हम उससे ब्लड लेते हैं और एक यूनिट ब्लड में लगभग हम 350 से 450 ml खून लेते हैं।
2: जी अच्छा, अक्सर जो खून की कमी एनीमिया बोलते हैं, तो उससे दूर होने के लिए एक आम आदमी को क्या क्या डाइट लेना चाहिए, क्या दिनचर्या करनी चाहिए कि खून उसका बढ़ा रहा हो किसी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ने पे? बहुत अक्सर हम खुद देखे हैं कि ख़ानदान में ही ज़रूरत पड़ जाती है, दादी की चाची जो भी रिलेटिव है, तो एक स्वस्थ आदमी खून देने लायक रहे तो डाइट में क्या लेना चाहिए उसको?
3: देखिए हरी सब्जियों को बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जो भी अवयव जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारा खाना है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सब्जी और मिनरल्स, विटामिन से परिपूर्ण, जो हमारा सदियों से हमारे यहाँ भारत में जो खाते रहे हैं हम लोग, उस तरह का खाना खाना चाहिए। अभी ये देखा जा रहा है कि जो ये जंक फूड्स हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पैटीज है, मोमो है, ये सिर्फ जो है मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं जो आंतों में जाके चिपकती हैं और नुकसान करती हैं। जो हमारा हेल्दी फूड होता है उसमें हमेशा सब्जियों को, हरी सब्जियों को खासकर माना गया है, गुड़ खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनको खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक रहता है।
2: जी सर, आजकल जो यंग जनरेशन की जो डेली लाइफ रूटीन है कि
3: एक दो बजे तक मोबाइल देखना, उसके बाद सुबह 10 बजे तक सोना, तो ये खून का प्रोडक्शन काम करने में कितना, ये क्या ये लाइफ जिंदगी के लिए कितना खतरनाक, क्या खून बढ़ता है या घटता है इसे? देखिए डायरेक्ट तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि खून बढ़ता है या घटता है, लेकिन अगर किसी की लाइफ डिस्टर्ब है, यानी कि अगर उसका जो आपने बताया रात में 2 बजे तक जग रहा है, दोपहर में उठ रहा है और खाने पीने की आदतें इसकी गड़बड़, जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दिन की शुरुआत ही गलत करेगा तो रात तक उसका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहेगा। इसके नाते क्या है कि जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप शरीर में सही समय से जागते हैं, सही पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन आपका सही रहता है, खान पान आपका सही रहता है, तो सारे सिस्टम के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड भी सही रहता है। क्योंकि ब्लड हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन भी स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा चीजें
2: जी। अक्सर ब्लड डोनेशन की घर ही में जरूरत पड़ जाती है, भैया जाओ ब्लड ले आओ, तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि घर के सदस्यों का खून देना?
3: देखिए जो रक्त केंद्र या रक्तदान शिविर होता है उसके द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है, संस्थाओं को भी दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से भी आप उस रक्तदान करने के बाद एक कार्ड मिलता है जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। उसके हिसाब से आप 3 महीने के भीतर आप कभी भी अपने किसी रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन के लोगों को आप जरूरत पड़ने पर संपर्क करें। जिस भी रक्त केंद्र पर आप जाते हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको रक्त उपलब्ध कराया जाता है
2: जी। ये सर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो ब्लड बैंक है और जो प्राइवेट ब्लड बैंक है, तो ब्लड का डोनेट करने में लेने देने में क्या अंतर है?
3: देखिए जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे हमारा अगर कोई मरीज सरकारी अस्पताल में एडमिट है, अगर हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि मेरा मरीज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और वह खून लेने हमारे जिला अस्पताल के रक्त केंद्र में आता है, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है जो सरकार के द्वारा तय किया गया है। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल से आता है तो चूंकि प्राइवेट अस्पताल में वो पैसे खर्च कर रहा है और वह सरकारी अस्पताल में आ रहा है तो सरकार उससे प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। लेकिन वो अगर किसी भी राज्य की सरकारी हमारे चिकित्सालय में भर्ती है तो उससे 1 रुपये का भी शुल्क प्रोसेसिंग तक का भी नहीं लिया जाता है और निःशुल्क खून उसको उपलब्ध कराया जाता है।
2: अच्छा जो प्राइवेट ब्लड बैंक है वो किस तरह का शुल्क लेते हैं?
3: अब इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो उनका प्राइवेट ब्लड बैंक है, उन्होंने उसको स्थापित किया है, तो वो उनके नियम कानून के दायरे में आता है। मैं सिर्फ राज्य की चिकित्सालय के बारे में बता पाऊंगा
2: जी। अब ब्लड बैंक के चीफ हैं, इस अवसर पर ये ब्लड डोनेशन डे के बारे में क्या आकाशवाणी गोरखपुर श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जीवन में आप कभी न कभी रक्तदान ज़रूर करें होंगे, और नहीं करें हैं तो तत्काल आपको मन में भाव जगाना चाहिए कि जो रक्तदान आप आज करेंगे उससे आप 4 जिंदगियों को बचाएंगे। और कभी भी वक्त पड़ने पे खुदा न खास्ता अगर आपको कभी ज़रूरत हो, कभी आवश्यकता हो, तो आपके अपने रिश्तेदारों को भी वह रक्त मिल सकता।
2: ब्लड डोनेशन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए स्थानीय ब्लड बैंक की डॉक्टर ज्योति पांडे ने बताया कि
4: देखिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर में कि ब्लड देंगे तो पहला तो कुछ लोगों के मन में रहता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब ब्लड देने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से एक जांच की जाती है, और जब एक बार जैसे हम डॉक्टर वगैरह अगर वहाँ पे बैठे हैं तो हमारा काम होता है कि हम पहले एक बार कन्फर्म कर लें कि आप खुद हेल्दी डोनर हैं कि नहीं है। तो इसलिए वीकनेस का तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई ऐसे पॉइंट हो सकता है। दूसरा कुछ लोगों के मन में होता है कि हमें सुई का दर्द होगा, ये बहुत मामूली सा दर्द होता है, ये मतलब ये शायद क्षणिक जैसे कह सकते हैं मोमेंट के लिए
2: जैसे इंजेक्शन लगता है जी।
4: जी एग्जैक्टली ये वही है कि आपको मतलब एक सुई लग गई है।
2: इस अवसर पर अपना विचार व्यक्त करते हुए एक स्वैच्छिक रक्तदाता और नगर के एक ब्लड बैंक के प्रबंधक देश दीपक,
5: सबसे ज्यादा फायदा ब्लड देने वाले को ही होता है, तो उसकी जो जगह खाली हो तो उस जगह की भरपाई शरीर खुद करता है, और शरीर जो ब्लड बनाता है वो प्योर ब्लड होता है, लिहाजा जितना ही आप ब्लड देते हैं आपके ब्लड की प्योरिटी बढ़ती जाती है और आप बीमारियों से बचते रहते हैं। क्योंकि आप जब रक्तदान करते हैं तो रक्तदान में जो ब्लड आपका निकलता है वह प्योर उतना नहीं होता जितना शरीर बनाता है, तो जब आप ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करते रहेंगे तो शरीर में ब्लड की प्योरिटी बढ़ती जाएगी और बीमारियां कम होती जाएंगी। आप अमूमन देखे होंगे किसी भी बीमारी में कोई भी बात जब जांच की आती है तो ब्लड की ही जांच होती है, सर दर्द हो तो भी ब्लड की जाँच, कैंसर हो तो भी ब्लड की जाँच, हड्डी टूटे तो भी ब्लड की जाँच, किसी भी दशा में ब्लड की ही जाँच होती है। तो ब्लड ही एक शरीर का ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचाता है, बीमारियां भी पहुंचाता है और मेडिसिन भी सारे शरीर में यही पहुंचाता है, हर अंगों में, क्योंकि दवाइयां शरीर के अंगों का निर्माण नहीं करती, शरीर स्वयं ही अंगों के निर्माण सिर्फ कैटलिस्ट का काम करती हैं दवाइयां। तो ब्लड देना सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जैसे आप ब्लड दे देते हैं बीमारियों से बचते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा ही है। एक शरीर में मानव के 90 दिन में ब्लड की लाइफ होती है, जो आपके शरीर में ब्लड है उसका जीवन 90 दिन का होता है। तो जब
6: आप कौन सा आरबीसी का या
5: ये ऐसा है ना, वो कंपोनेंट में आते हैं, ब्लड होल होता है, इसमें सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट भी होती है, क्रायो भी होता है, अब उससे ही हम पीआरबीसी या एलपीआरबीसी बनाते हैं। पीआरबीसी जो ब्लड है होल ब्लड से ही निकाल के बनता है, उसमें से कुछ चीज़ें सेपरेट कर दी जाती हैं और हम ही हैं इस इलाके में पीआरबीसी से भी ये उत्तम कैटेगरी का रक्त जो होता है वो ल्यूकोडिप्लेटेड होता है, जिसमें से हम डब्ल्यूबीसी निकाल देते हैं, तो एलपीआरबीसी ब्लड ही हम देते हैं, वो सबसे अच्छा और प्योर ब्लड होता है। ये बस पीआरबीसी का मतलब है पैक रेड सेल, लेकिन उसमें से भी हम जब डब्ल्यूबीसी को डिटैच कर देते हैं तो वो ल्यूकोडिप्लेटेड हो जाती है और एलपीआरबीसी उसको बोलते हैं, ये टर्म है एलपीआरबीसी, वो ज़्यादा ही अच्छे कैटेगरी का ब्लड होता है।
6: अच्छा ये बताइए, जो आदमी हमने डोनेट किया या आपने किया, तो कितने दिनों तक ये प्रिजर्व रखा जा सकता है?
5: देखिए ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग लाइफ के होते हैं, जैसे पीआरबीसी है तो यह 35 से 42 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, और उसी तरह से इसमें से निकलते वाला प्लाज्मा अगर उसको -80 पर रखते हैं तो उसको एक साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उसी में का निकलने वाला कंपोनेंट है प्लेटलेट, उसकी लाइफ सिर्फ 5 दिन की होती है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग लाइफ। पहले आप स्लोगन सुनते रहे होंगे कि एक रक्तदान बचाए एक जान, क्योंकि तब ये कंपोनेंट सेपरेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में जो स्लोगन है वो एक रक्तदान बचाए 4 जान, क्यों? पीआरबीसी से अलग जान बच सकती है, प्लाज्मा से अलग एक जान बच सकती है, प्लेटलेट से अलग जान बच सकती है, क्रायो से अलग। तो ये सारे कंपोनेंट ही जैसे जैसे पेशेंट को नीड होती है उसी के हिसाब से कंपोनेंट इस्तेमाल।
2: आई श्रोताओं, अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे डोनर से जिन्होंने 63 मरतबा ब्लड डोनेट किया है।
7: मेरा नाम महेश गोपाल गर्ग है। ब्लड डोनेशन में लोगों को प्रमोट करना और सहयोग करते हैं। मैंने अभी तक 63 बार रक्तदान किया है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं, रक्त का केवल एक मात्र रक्त ही विकल्प है, जो चीज मशीन से नहीं बनती है।
2: रेडियो रिपोर्ट का ही अंक समाप्त होता है। वाचन व संकलन शफकत अली खान का था।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित ये रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
8: जिंदगी बहुत की से तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान। अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इको कार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुनन गोरखपुर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और

0: भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा। कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
8: आज भारत में एक startup revolution हो रहा है। इस revolution में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
8: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
7: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
9: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and

0: राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतार इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू विलोम चापू ताल।

0: श्री जी, श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विथ अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Piravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के

0: ब्रिक्स में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions.